आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।

0: श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना साधना सरगम की आवाज में।

श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे हेमंती शुक्ला, चंद्रु आत्मा, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के विचार।
1: इस युग में विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान हमें असीम शक्ति प्रदान करता है। हमें वैज्ञानिकों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उनकी खोजों और आविष्कारों के द्वारा हमें बड़ा बल मिल सकता है, परंतु हम चाहेंगे कि इस शक्ति का उपयोग मानव के सुख, शांति और खुशहाली के लिए हो। इसका लाभ सभी को उपलब्ध हो, चाहे गरीब हो या अमीर। शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाए, विनाश के लिए नहीं। आणविक शक्ति को ही लीजिए, ये शक्ति नाना प्रकार की रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है और लाई जा सकती है, परंतु हम नहीं चाहते कि इस शक्ति का प्रयोग सामरिक शक्ति के लिए किया जाए और इसके सहारे नाना प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं। हिरोशिमा में जो बम गिराया, उसके भयंकर विध्वंसकारी परिणाम दुनिया आज भी झेल रही है, ये घटना कम प्रेरणादायक नहीं। शक्ति के आधार पर हम विजय या जीत का स्वप्न इसलिए ना देखें कि हम किसी देश या राष्ट्र को पराजित कर सकें। हमारी जीत का आधार सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। जीत हो तो ऐसी कि हम लोगों और राष्ट्रों के हृदय जीत सकें। अशोक महान की कलिंग विजय हमारे लिए आदर्श का काम करे। हमारी जीत मानव प्रेम, अनुशासन, सत्य अहिंसा, सहृदयता, सद्भावना, सहनशीलता और सर्वधर्म संभाव की भावनाओं से प्रेरित हो। अंतरिक्ष की उड़ानें हमें इसलिए प्रिय हैं कि ये हमें विभिन्न प्रकार का लाभकारी मौसम ज्ञान देती हैं, हमें आंधी तूफान का बोध कराती हैं, हमारी कृषि समस्याओं का समाधान करती हैं। हम रचनात्मक कार्यों के लिए इन्हें उपयोगी समझते हैं, अन्यथा हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। शक्ति ग्रहण विज्ञान के द्वारा हमें प्रिय है। यदि ये हमारे देश और राष्ट्र की सुरक्षा के काम आ सके, हम इतने शक्तिशाली होना चाहते हैं कि हम अपनी ही नहीं अन्य देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आवश्यकता पड़ने पर संभाल सकें। हम स्वयं शांति प्रिय हैं। हम सांसारिक समस्त देशों को शांति का पैगाम देना चाहते हैं और कामना करते हैं कि हम विश्व शांति के लिए अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। ये सब तभी संभव हो सकता है जब देश के सभी लोग एक हों, एकता और अखंडता में उनका दृढ़ विश्वास हो और देश की एकता और अखंडता के लिए हर तरह के बलिदान के लिए तैयार हों और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों से खेलकर अपने खून की आखिरी बूंद से भी देश को शक्तिशाली बनाने में संकोच न करें।
0: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी के विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35

इस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार होंगे जगजीत सिंह, संगीत होगा सतीश भाटिया का। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा। कृषि क्षेत्र में के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर संजय वर्मा की वार्ता।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे गुर्दे की पथरी और उसका उपचार विषय पर वार्ता। आलेख होगा डॉक्टर ए के बैजल का, स्वर होंगे प्रमोद अग्रवाल के। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। 8:45 पर सुनेगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा सुना जा सकेगा सुबह 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में सुनेगा गोपीचंद शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम सुरसरिता का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग आनंद भैरव और राग अहीर भैरव। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सुनेंगे निर्देशक सुबोध मुखर्जी के बारे में। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना जा सकेगा 11:30 पर। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आज का विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा एवं परिस्थिति तंत्र के नन्हे श्रमिक। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुना जा सकेगा 12:00। 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम नए तराने। 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी शहद है मनुष्य के लिए जरूरी और मधुमक्खियां मनुष्यता के लिए पर चर्चा। गीत संगीत के अलावा सुनेगा मुझे कुछ कहना है मेरी माटी मेरा देश बात पते की। साथ ही सुनवाई जाएगी डॉक्टर रेखा कक्कड़ की कहानी शीर्षक होगा माहौल। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर सुनेगा सलमा आगा की गाई चंद गजलें।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर सुनेगा पंडित निखिल बनर्जी का राग मांड में सितार वादन और उस्ताद अली अहमद हुसैन का राग पूर्वी में शहनाई वादन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे 2:45 पर। 3 बजे सुनेगा लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुन सकेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। श्रोताओ, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं जगजीत सिंह।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि क्षेत्र के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर संजय वर्मा की वार्ता।
1: किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं अनुदान पर दी जा रही हैं? नहीं, मैं आज आप लोगों के सामने बताता हूं। सबसे पहले है सोलर कुकर। यह धूप से खाना बनाने का एक आधुनिक साधन है। इसके द्वारा एक साथ चार प्रकार का खाना तैयार किया जा सकता है। विभिन्न परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि सोलर कुकर से बना भोजन अन्य ईंधन की सहायता से बने भोजन से अधिक पौष्टिक होता है। इसमें छोले, राजमा, दाल, केक, गोश्त, चिकन, खीर, बिस्किट, खिचड़ी आदि पकाई जा सकती है। यह भीगी और गीली वस्तुएं जैसे जड़ी बूटियों को सुखाने के काम में भी आता है। सादा सोलर कुकर की कीमत 1500 रुपये है। दूसरे तरह का है विद्युत बैकअप वाला सोलर कुकर। इसमें रात के समय तथा बरसात के दिनों में धूप ना होने की दशा में बहुत ही कम बिजली के खर्च पर खाना बनाता है। इसमें ना तो खाना जलता है और ना ही कोई गंध या धुआं होता है। इससे घर तथा वातावरण शुद्ध रहता है। बिजली की व्यवस्था वाले सोलर कुकर की कीमत मात्र 2400 रुपये है। तीसरा है डिश टाइप सोलर कुकर। इसमें 10 से 15 व्यक्तियों का खाना 30 से 40 मिनट में तैयार किया जा सकता है। तापमान अधिक होने के कारण खाना बनाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चश्मा, दस्ताने आदि भी फ्री में मिलते हैं। घरों, ढाबों, कैंटीनों, होटल के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपये है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें आधा अर्थात 2500 रुपये का अनुदान है। इसी प्रकार एक सूर्य की रोशनी से पानी गर्म करने वाला संयंत्र है, जिसका नाम है सोलर वाटर हीटर। यह संयंत्र पानी गर्म करने के काम आता है। इसकी कीमत क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे 100 लीटर क्षमता वाले सोलर वाटर हीटर की कीमत लगभग 20,000 है। इस पर फिलहाल कोई अनुदान नहीं है, लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। नर्सिंग होम के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसमें बिजली की बचत, आयकर की छूट तथा बड़े क्षमता के संयंत्रों पर लोन आदि की व्यवस्था बैंक से की जाती है। इसमें लाभार्थी संस्था को 25% प्रोजेक्ट कास्ट वहन करना पड़ती है। लोन का 10 वर्ष बाद फिर पेबैक पीरियड है। आवेदन के साथ 7500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, भी संलग्न करना पड़ता है। वर्तमान में 100 लीटर से 10,000 लीटर क्षमता के संयंत्र उपलब्ध हैं, जिनकी लागत ₹20,000 से 1,00,000 तक है। इसी प्रकार एक बहुत उपयोगी संयंत्र है सोलर घरेलू लाइट। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह जनपद के सभी ग्रामों के लोगों के लिए, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र ₹5725 में उपलब्ध है। इससे लाभार्थी 2 ट्यूबराड और 1 पोर्टेबल टीवी भी चला सके। फिर है सोलर लालटेन। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह सभी प्रकार के लाभार्थियों को देय है, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र ₹1750 में दी जा रही है। सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशन एक ऐसी रोजगार परक योजना है, जिसमें 30 लालटेनों की एक चार्जिंग सेट दिया जाता है। उसमें सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाते हैं और अविद्युतित क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जो विवाह, शादी आदि के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, अपने व्यवसाय में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुदान व लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है। फिर आता है सोलर पंप। दिनों दिन बिजली की परेशानी को देखते हुए सौर ऊर्जा के पंपों की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम जहां पेयजल की समस्या है तथा ग्रामवासी लगभग 22,000 रुपये

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे जगजीत सिंह व अनुराधा पुनवाल। संगीत था सतीश भाटिया का।

पानी की टंकी आदि के निर्माण के लिए खर्च करना चाहते हैं वहाँ यह योजना क्रियान्वित की जा सकती है। इसमें अंबेडकर ग्राम व गांधी ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है। 1 किलोवाट पंप की लागत ₹3,20,000 है। वर्तमान में अनुदान इस पर ₹1,20,000 है। इरेडा द्वारा लोन भी दिया जा रहा है जो ₹80,000 है। इसमें करीब 3 इंच डिलीवरी पर एक दिन में 1 एकड़ पानी से सिंचाई की जा सकती है। कुल 70,000 लीटर भूमिगत जल भी ये पेयजल के रूप में उपलब्ध कराता है। फिर आता है बायोगैस संयंत्र। 10 सीट से लेकर 30 सीट लैट्रिन कॉम्प्लेक्स बाथरूम यूरिनल्स के साथ इसमें 10 से 35 घन मीटर क्षमता के बायोगैस के साथ साथ 500 से 3500 व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे उत्पन्न गैस का उपयोग पंप सेट चलाकर

0: में 10 से 35 घन मीटर क्षमता के बायोगैस के साथ साथ 500 से 3500 व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे उत्पन्न गैस का उपयोग पंप सेट चलाकर पानी निकालने या जनरेटर चलाकर बिजली की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। नगर पालिकाएँ या ऐसी संस्थाएं जो लागत का 40 से 50% लाभार्थी अंशदान वहन करने के लिए तैयार हैं, वहाँ इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। लाभार्थियों को 50 रुपये सिक्योरिटी व 30 रुपये प्रति मास प्रति परिवार मेंटेनेंस के लिए जमा करना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर आटा चक्की की स्थापना भी की जाती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडों का चयन किया जाता है। उसमें भारत सरकार से अनुदान के आधार पर केरोसिन लालटेन, प्रेशर कुकर, सोलर लाइट, सोलर लालटेन और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाती है। एक आता है पवन चक्की। हवा की गति 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होने पर पवन चक्की से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसका उपयोग भूमिगत जल बोरिंग करके पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों दिन एक प्रकार की समस्या आती जा रही है कि वहाँ कूड़े कचरे का निपटान सही नहीं हो पा रहा। इसके लिए भारत सरकार ने गैसीफायर की एक स्थापना करने की योजना बनाई है। गैसीफायर संयंत्र धान की भूसी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, बुरादों, घास फूस जैसे बायोमास को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित करने वाला संयंत्र है। इसमें उत्पन्न होने वाली गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 1 किलो धान की भूसी या लकड़ी से 2.5 से 3 न्यूटन स्क्वायर मीटर गैस उत्पन्न होती है, जिससे 2500 से 3000 किलो कैलोरी ताप उत्पन्न होता है। यह डीजल इंजन में डीजल की 65 से 85% बचत करता है। भट्टी या चूल्हों में जिसमें फर्नेस ऑयल डीजल इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, यह गैस अकेले या वर्तमान ईंधन के साथ प्रयोग की जा सकती है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इसमें 900 डिग्री टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मिलता है। यह रोलिंग मिल, बॉयलर, ब्रेकरी, ईंट उद्योग के लिए, होटल, कैंटीन और रेस्टोरेंट में अत्यंत उपयोगी है। इसमें भारत सरकार तथा नेडा विभाग द्वारा मान्य अनुदान देय है। इनकम टैक्स में भी छूट एवं बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि क्षेत्र के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर संजय वर्मा की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज

0: को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरं आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्रॉडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्तर्राष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 700 से

0: दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
1: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित
2: रखते रहे हैं कि उनकी जो भाषा है उसमें कोई ऐसा
1: देशों के सहयोग को

0: और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:10 पर, जिसमें आप सुनेंगे संयुक्ता बैनर्जी के स्वर में गीत।
1: क्यों और अन्य
2: केंद्र
3: बेश मोने पड़े
2: ಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
3: ಬಾಬಾ ಬೋಲೇಚಿಲೆನ್
4: ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕರೆಂಗೆ.
1: ಪ್ರೈಮ್ ಮೋದಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಸ್ ಬೈ 200% ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೆಕೇಡ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮೋದಿ ಅಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಆಶಾ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇರಾ ವಿತ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ an India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into effect from the 1st of next month. Under the scheme, the financial assistance will be transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries through direct benefit transfer or DBT. Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches of an Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on 2nd February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed reshaping global health, a shared responsibility, Mr. Nadda highlighted that India has operationalized over 1,85,000 Ayushman Arogya Mandirs across the country, delivering comprehensive primary health care services right at the community level. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. The U.S. Department of State announced the visit. State Department spokesman Timmy Pigott said during his travel, from the 23rd to 26th of May, Mr. Rubio will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. Mr. Pigott said he will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. The U.S. Embassy in New Delhi has said that Mr. Rubio would attend the Quad meetings on the 26th of May. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match at Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 7:10 हो रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुर्दे की पथरी और उसका उपचार विषय पर वार्ता। आलेख है डॉक्टर ए के बैजल का, स्वर है प्रमोद अग्रवाल के।
5: हमारे शरीर में विभिन्न तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन मूत्र तंत्र आदि। ये सभी तंत्र शरीर में आपस में मिलकर विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं। शरीर में दो गुर्दे यानी वृक्क होते हैं, जो शरीर की सफाई का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मूत्र मूत्राशय यानी गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है। गुर्दे मूत्राशय से मूत्र नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। गुर्दे की पथरी एक रोग अवस्था है जिसमें एक या दोनों गुर्दों में पथरी बनने लगती है। आज हम आपको बताते हैं

0: ये पथरी कैसे बनती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका उपचार और पुनर्निर्माण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। गुर्दों में पथरी कई कारणों से बनती है। भोजन में विटामिन ए की कमी होने, शरीर में पानी की कमी होने, मूत्र में साइट्रेट की मात्रा कम होने और लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट आदि के कण शरीर में जमा होने लगते हैं। ये सभी कण पथरी बनाते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अवस्था में अधिक मात्रा में कैल्शियम मूत्र में होने से भी पथरी बनती है। गुर्दे में पथरी कई प्रकार की होती है, जैसे ऑक्सलेट कैलकुलस, फॉस्फेट कैलकुलस, यूरिक अम्ल, सिस्टिन कैलकुली। पथरी 30 से 50 वर्ष की उम्र में 50% रोगियों में मिलती है। पुरुष और स्त्रियों में इसका 4:3 का अनुपात होता है। गुर्दों में पाई जाने वाली पथरी के अनेक लक्षण होते हैं। साइलेंट पथरी शरीर में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। यूरिग्मिया में गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। गुर्दे की पथरी में पीठ, रीढ़ की हड्डी, पसलियों के बीच में तेज दर्द होता है। चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने से यह दर्द बढ़ जाता है। यूरेटेरिक दर्द में रोगी के अचानक और असहनीय दर्द उठता है। रोग की दूसरी अवस्थाओं में बूंद बूंद मूत्र आना, मूत्र में रक्त का आना, गुर्दों में रुकावट होने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण रोगी के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे पथरी नीचे की ओर आती है, असहनीय दर्द की लहरें उठने लगती हैं। यह दर्द जनन अंगों, जांघों, वृषण आदि में तेजी से उठने लगता है। 0.5 सेंटीमीटर से कम आकार की पथरी मूत्र के साथ स्वतः ही निकल जाती है। बड़ी और गुर्दे में अटकी हुई पथरी को हटाने के लिए ऑपरेशन यानी सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। गुर्दों में पथरी की पहचान रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सिस्टोस्कोपी, एक्सक्रीशन यूरोग्राफी की सहायता से की जाती है। पथरी के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। पथरी के रोगियों की मूत्र इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक फैक्टर्स की संभावनाओं के आधार पर जांच की जाती है। रक्त में कैल्शियम और यूरिक अम्ल की जांच की जाती है। मूत्र में सिस्टर्नी और पथरी के रासायनिक विश्लेषण की जांच भी की जाती है। पथरी रोग के उपचार के दौरान और उसके बाद दूध, दूध से बने पदार्थ, पालक, टमाटर, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन या तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो।
1: अभी आप सुन रहे थे गुर्दे की पथरी और उसका उपचार विषय पर वार्ता। आलेख था डॉक्टर ए.के. बैजल का, स्वर थे प्रमोद अग्रवाल की। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वर में ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में ये देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:18 होने क्यों है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में

0: हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया।

0: श्री गांधी ने रायबरेली में पीएससी के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: Miren, ve.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:31 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना ट्रांस यमुना आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम गुलफराज अब्बास पुत्र सलाउद्दीन है। ये विगत 21 मार्च 2026 से लापता है। गुलफराज नूरानी मस्जिद के पास पंबा रोड टेढ़ी बगिया आगरा के रहने वाले हैं। इनकी आयु 24 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग सांवला और चेहरा सामान्य है। ये दिव्यांग हैं। गुलफराज ने काले रंग की जीन्स पैंट, लाल व काले रंग की चेक की शर्ट और पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें पहने हुए हैं। गुलफराज अब्बास के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना ट्रांस यमुना जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना जैतपुर आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार सपना पत्नी अंकित विगत 26 मार्च 2026 से लापता हैं। ये कानपुरा आगरा की रहने वाली हैं। सपना की आयु करीब 25 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये हल्के लाल रंग की साड़ी व पैरों में चप्पलें पहने हुए हैं। सपना के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना जैतपुर जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना ट्रांस यमुना आगरा से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार पूजा चौहान पत्नी अभिषेक चौहान विगत 7 अप्रैल 2026 से लापता हैं। ये A115 दाऊजी वाटिका शिवानी धाम कालिंदी विहार ट्रांस यमुना आगरा की रहने वाली हैं। पूजा चौहान की आयु 34 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा और चेहरा सामान्य है। ये गुलाबी व सफ़ेद रंग का सूट सलवार और पैरों में चप्पलें व सिर पर दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। पूजा चौहान के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना ट्रांस यमुना जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्य

ब्रह्मास्पास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। आरबीएस मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस से कर सकते हैं इंटीग्रेटेड एमबीए और एमसीए। आरबीएस मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस खंडारी में इंटरमीडिएट कर चुके छात्र बीबीए बीसीए के साथ ही 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। 27 वर्ष पुराने कैंपस में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही एमबीए और एमसीए में भी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। आरबीएस मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस के निदेशक ने बताया कि राजा बलवंत सिंह कॉलेज की स्थापना वर्ष 1885 में अवागढ़ के राजा बलवंत सिंह द्वारा की गई थी। कॉलेज बलवंत एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित है। सोसाइटी द्वारा ही राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। यह संस्थान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU लखनऊ से संबद्ध और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE नई दिल्ली से अनुमोदित है। सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं संस्थान के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। वेबसाइट www.rbsmtc.in पर विजिट कर एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मोबाइल नंबर 9058088437 या 9758325384 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल संख्या एक बार फिर सुन लीजिए 9058088437 या 9758325384।

5 जिलों में जल्द खुलेंगे इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में प्रदेश के 5 जिलों मेरठ, आगरा, गोंडा, बस्ती और मिर्जापुर में इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल की स्थापना की जाएगी। इन मेडिकल कॉलेजों में एक छत के नीचे होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई और रोगियों का इलाज होगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह के कॉलेज बनने जा रहे हैं। कॉलेजों के शुरू होने से नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, आयुष की पढ़ाई के लिए सीटों में वृद्धि होगी। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए संबंधित जिलाधिकारियों ने आवश्यक जमीन आयुष विभाग को उपलब्ध करा दी है। लोक निर्माण विभाग ने परीक्षण के बाद जमीन को निर्माण योग्य घोषित कर दिया है। निर्माण पर होने वाले खर्च का एस्टीमेट वित्त विभाग को भेजा जा चुका है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। 60-60 बिस्तरों वाले इन मेडिकल कॉलेजों के लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ के नए पदों

का प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। पहले चरण में प्रत्येक कॉलेज में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी विधा से इलाज कराने वाले 20-20 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा होगी। आयुष विभाग के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इन कॉलेजों में कम से कम ओपीडी शुरू कर देना चाहती है, इसलिए ओपीडी भवन का कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।

रेलवे में 6,565 पदों पर होगी टेक्नीशियन की बम्पर भर्ती। रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने देश भर में टेक्नीशियन के कुल 6,565 पदों पर बम्पर भर्ती निकालने का फैसला किया है। इस भर्ती के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 30 जून को शुरू होगी और 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। इस भर्ती के जरिए चयनित होने वाले टेक्नीशियनों की तैनाती सीधे स्टेशनों यार्डों में होगी, जहां वे सिग्नल की मरम्मत, बोगियों की जांच और ब्रेक गियर को दुरुस्त कर ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे के बड़े कारखानों में तैनात होने वाले कर्मी रेल इंजनों और डिब्बों की समय समय पर होने वाली बड़ी मरम्मत का काम संभालेंगे, जबकि प्रोडक्शन यूनिट्स में ये नई और आधुनिक ट्रेनों जैसे वंदे भारत व इंजन निर्माण और असेंबली से जुड़े काम करेंगे। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष तथा ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष तय की गई है। शैक्षिक योग्यता के तहत ग्रेड 1 सिग्नल के लिए BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BSc डिग्री धारक पात्र होंगे। वहीं ग्रेड 3 के लिए संबंधित ट्रेड में ITI के साथ 10वीं पास होना या PCM विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य व OBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 तथा SC ST दिव्यांग व महिलाओं के लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की मुख्य सूचनाओं की ओर। 15 जून के बाद शुरू होंगी ग्रेटर आगरा में बुकिंग। एडीए द्वारा रायपुर और रहनकला में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा की टाउनशिप में बुकिंग के लिए इच्छुक लोगों को अभी 25 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। एडीए 15 जून के बाद टाउनशिप में आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू करेगा। आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।

टाउनशिप के भूखंडों की दरों का निर्धारण बुधवार को होने वाली एडीए बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। रायपुर और रहनकला में करीब 449 हेक्टेयर भूमि में एडीए की टाउनशिप ग्रेटर आगरा का भूमि पूजन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल को किया था। टाउनशिप की 86% भूमि का मुआवजा एडीए द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय से वितरित कराया जा चुका है। यहां कब्जा लेने के साथ ही एडीए ने 45 मीटर रोड और टाउनशिप में आंतरिक विकास के काम शुरू करा दिए हैं। ग्रेटर आगरा की इनर रिंग रोड के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से बेहतर कनेक्टिविटी है, जिससे

7 अप्रैल को किया था। टाउनशिप की 86% भूमि का मुआवजा एडीए द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय से वितरित कराया जाएगा जा चुका है। यहां कब्जा लेने के साथ ही एडीए ने 45 मीटर रोड और टाउनशिप में आंतरिक विकास के काम शुरू करा दिए हैं। ग्रेटर आगरा की इनर रिंग रोड के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से बेहतर कनेक्टिविटी है, जिससे शहरवासी टाउनशिप में बुकिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही वह भूखंड की दरों के बारे में जानना चाहते हैं। ग्रेटर आगरा की 8 टाउनशिप में 4,353 आवासीय भूखंड हैं। यमुनापुरम पूरी तरह व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी, जबकि कावेरीपुरम में रिक्रिएशनल क्षेत्र रहेगा। यहां यमुना किनारे डूब क्षेत्र में और हाईटेंशन लाइन के नीचे हरित क्षेत्र रहेगा। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रेटर आगरा में 15 जून के बाद बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। यहां टाउनशिप के हिसाब से बुकिंग शुरू की जाएगी। आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।

सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे पीआरओ ने बताया कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी।

वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण मान्य नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर

0: फ्रेंड्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन

0: सहित तीन गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
3: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, मैं सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
4: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।

0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him.

0: पहुंचे जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मेटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तिजारती और इक्तसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का माहिदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाजह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मियार नहीं।
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
3: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार, टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए

0: साजगार, राहदारी, समुद्री मईशत, जहाजों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आजाद तिजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इक्तसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपए की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मंसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाये की है। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मर्तबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारी के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन

0: आईआईएमसी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में आईआईएमसी हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कानात और हमारे मुल्क में ग़िज़ाई सिक्योरिटी माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेहकाम सलामती और समंदरी रास्तों की आजादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में तावन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चरस से। गीत को गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आनंद बख्शी ने। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की आवाज़ों में फिल्म चरस का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में एक बार फिर आनंद बख्शी की शब्द रचना को। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए

0: सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
1: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ

0: बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्रहित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बॉयफ्रेंड का ये गीत।
1: मैंने कहा मेरी जान आधा भर से, मैंने कहा आधा भर से।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को। धुन बनाई थी ओपी नैयर ने, फिल्म का नाम था सीआईडी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लुटेरा का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोहिनूर का ये गीत। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार थे नौशाद। इसी के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपी चंद शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोपीचंद शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे गोपीचंद शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत लिया है फिल्म बंटी और बबली से। गीत को गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चल मेरे भाई का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म कुछ ना कहो का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत। गीतकार थे अजीज़ खान शहानी, संगीतकार थे नदीम श्रवण। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता में आइए अब सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग आनंद भैरव और राग अहीर भैरव पे ख्याल गायन। सबसे पहले आइए सुनते हैं राग आनंद भैरव में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे राग आनंद भैरव में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का ख्याल गायन। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। गायक कलाकार हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस निर्देशक और निर्माता को, जिनकी फिल्मों में संगीत की मिठास, रोमांस की सादगी और मनोरंजन की चमक एक साथ दिखाई देती है। सुबोध मुखर्जी। सुबोध मुखर्जी का जन्म 14 अप्रैल 1921 को झांसी में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रहे और उनका नाम खासतौर पर मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, जंगली, अभिनेत्री जैसी फिल्मों से जुड़ा है। उन्होंने अपने करियर में कम फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्मों के गीत और दृश्य आज भी सिने प्रेमियों की स्मृतियों में बसे हुए हैं। सुबोध मुखर्जी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी के भाई थे। इसी फिल्मी परिवेश ने उन्हें सिनेमा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने निर्देशन, निर्माण और कहानी कहने की कला में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके पुत्र संजय मुखर्जी का भी उल्लेख उनके पारिवारिक संदर्भों में मिलता है। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत अधिक सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे निजी जीवन को अपेक्षाकृत शांत और पर्दे के पीछे रखने वाले फिल्मकारों में गिने जाते थे। तो आइए उनके सिनेमा सफर की शुरुआत करते हैं उनकी प्रसिद्ध फिल्म मुनीम जी के एक साथ सदाबहार गीत से।

दोस्तों, मुनीम जी वर्ष 1955 की फिल्म थी जिसमें देवानंद और नलिनी जयवंत जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का निर्देशन सुबोध मुखर्जी ने किया था। ये वो समय था जब हिंदी सिनेमा में कहानी, संगीत और अभिनय तीनों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सुबोध मुखर्जी ने अपनी पहली ही बड़ी फिल्म में ये दिखा दिया कि वे लोकप्रिय सिनेमा की नब्ज पहचानते हैं। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ गीतों की ऐसी मिठास होती थी जो कहानी को आगे भी बढ़ाती थी और श्रोताओं दर्शकों के मन में भी उतर जाती थी। सुबोध मुखर्जी की फिल्मों की एक विशेषता ये भी रही कि वे दर्शकों को एक हल्के, सुंदर और संगीतमय संसार में ले जाते थे। उनकी अगली चर्चित फिल्म थी पेइंग गेस्ट, जो 1957 में आई। ये फिल्म भी देवानंद के आकर्षक अभिनय, मधुर संगीत और रोमांटिक अंदाज के लिए याद की जाती है।

सुबोध मुखर्जी के करियर में जंगली वर्ष 1961 की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म रही। वे इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों थे। शमी कपूर और सायरा बानो अभिनीत इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और युवापन दिया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, गीत और शमी कपूर का जोशीला अंदाज उस दौर की पहचान बन गया। जंगली में कश्मीर की खूबसूरती, प्रेम की चंचलता और पारिवारिक भावनाओं का सुंदर मेल था। इस फिल्म ने सुबोध मुखर्जी को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में स्थापित किया जो बदलते दर्शक के स्वाद को समझते थे।

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: दोस्तों, सुबोध मुखर्जी की फिल्मों में संगीत हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा। शागिर्द वर्ष 1967 में आई, जिसका निर्माण सुबोध मुखर्जी ने किया और निर्देशन समीर गांगुली ने किया। ये फिल्म हल्के फुल्के मनोरंजन, रोमांस और यादगार गीतों के लिए जानी जाती है। वो है जरा खफा खफा जैसे गीतों ने इस फिल्म को श्रोताओं के दिलों में जगह दी। ये भी उनकी फिल्मी समझ का प्रमाण है कि वे केवल निर्देशक के रूप में ही नहीं, निर्माता के रूप में भी गीत संगीत और कलाकारों के चयन को बहुत महत्व देते थे।

वर्ष 1970 में आई फिल्म अभिनेत्री सुबोध मुखर्जी के निर्देशन और निर्माण से जुड़ी एक और उल्लेखनीय फिल्म थी। इस फिल्म में कला, वैवाहिक जीवन, करियर और रिश्तों की भावनात्मक उलझनों को दिखाया गया। अभिनेत्री में मनोरंजन के साथ साथ एक संवेदनशील सामाजिक पक्ष भी था। इसमें ये प्रश्न भी उभरता है कि विवाह और व्यक्तिगत प्रतिभा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस तरह सुबोध मुखर्जी का सिनेमा केवल गीत संगीत तक सीमित नहीं था, उसमें मानवीय रिश्तों की कोमलता और जीवन की छोटी बड़ी उलझनें भी दिखाई देती थीं।

दोस्तों, सुबोध मुखर्जी के निर्माण से जुड़ी एक और यादगार फिल्म है शर्मीली, जो वर्ष 1971 में आई। इस फिल्म का निर्देशन समीर गांगुली ने किया था और इसे सुबोध मुखर्जी ने निर्मित किया था। शशि कपूर और राखी अभिनीत शर्मीली अपने रोमांस, रहस्य और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध हुई। इस फिल्म से ये स्पष्ट होता है कि सुबोध मुखर्जी की फिल्मों में संगीत केवल धुन नहीं बल्कि वातावरण रचने की कला था।

सुबोध मुखर्जी के लिए स्मृति चिन्ह रहे मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, जंगली, अभिनेत्री और शर्मिले जैसी फिल्में, जिनके गीत आज भी रेडियो, संगीत प्रेमियों और पुराने सिनेमा की यादों में जीवित हैं। अंत में दोस्तों बस इतना ही कि सुबोध मुखर्जी हिंदी सिनेमा के ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने सरलता को सौंदर्य बनाया और मनोरंजन को गरिमा दी। उनकी फिल्मों में चमक थी लेकिन दिखावा नहीं, संगीत था लेकिन शोर नहीं, भावनाएं थी लेकिन अतिरेक नहीं। वे पर्दे के पीछे रहकर भी उस सुनहरे दौर की धड़कन बन गए जिसे आज हम पुराने हिंदी सिनेमा की मधुर स्मृतियों के रूप में याद करते हैं। 21 मई 2005 को उनका निधन हुआ लेकिन उनकी रची हुई फिल्मी दुनिया आज भी अपने गीतों, दृश्यों और भावनाओं के साथ जीवित है। सुबोध मुखर्जी को हिंदी सिनेमा के इस मधुर योगदान के लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ मैं गरिमा शाक के लेती हूं आपसे विदा और आप कहीं नहीं जाएं, बने रहें आकाशवाणी आगरा के साथ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन नन्हे मेहनती और अनमोल श्रमिकों की, जो बिना किसी शोर शराबे के हमारी थाली, हमारे खेतों और हमारे पर्यावरण को समृद्ध बनाते हैं। जी हाँ, आज का विषय है खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र के नन्हे श्रमिक यानी मधुमक्खियां, और अवसर है विश्व मधुमक्खी दिवस का। कहते हैं प्रकृति का हर जीव किसी न किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। मधुमक्खियां भी ऐसी ही अद्भुत रचनाएं हैं जो फूलों से रस लेकर सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि धरती पर भोजन की निरंतरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इसी मधुर शुरुआत के साथ सुनते हैं पहला गीत जो प्रकृति की खूबसूरती को याद दिलाता है।

दोस्तों, फूलों की दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही उपयोगी भी है, और इन्हीं फूलों से जुड़ी होती हैं मधुमक्खियां। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं तो वे पराग कणों को स्थानांतरित करती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। परागण के कारण ही फल, सब्जियां, अनाज, बीज बन पाते हैं, यानी हमारी थाली में आने वाले कई खाद्य पदार्थों के पीछे इन छोटी सी मधुमक्खियों की बड़ी मेहनत छिपी होती है। अगर मधुमक्खियां ना हो तो सेब, बादाम, सरसों, सूरजमुखी, तरबूज, खीरा, कद्दू जैसी अनेक फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए मधुमक्खियां केवल शहद देने वाली जीव नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है। तो अब प्रकृति की इसी कोमलता और हरियाली को महसूस करते हुए सुनते हैं अगला गीत।

सचमुच दोस्तों, ये जमीन, ये आसमां, ये पेड़, ये खेत सब मिलकर ही एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और इस तंत्र में मधुमक्खियां छोटे आकार के बावजूद बहुत बड़ा काम करती हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि मधुमक्खियां और अन्य परागण करने वाले जीव हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। मधुमक्खियां जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। वे पौधों के प्रजनन में सहयोग करती हैं और इसी से जंगल, खेत, बगीचे और प्राकृतिक जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, जलवायु परिवर्तन और फूलों वाले पौधों की कमी के कारण मधुमक्खियों का जीवन भी खतरे में पड़ रहा है। इसलिए विश्व मधुमक्खी दिवस हमें केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी सौंपता है कि हम प्रकृति के इन नन्हे श्रमिकों के लिए सुरक्षित

दोस्तों, फूलों की सुंदरता हमारी आंखों को आनंद देती है, लेकिन उन्हीं फूलों के बीच चुपचाप काम करती मधुमक्खियां हमारे जीवन को भोजन और पोषण से जोड़ती हैं। वे प्रकृति की ऐसी मेहनती साथी हैं जिनका योगदान अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हमारे खेतों, बगीचों और रसोई तक महसूस किया जाता है। आज चिंता की बात यह है कि इन नन्ही परागकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। खेती में रासायनिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, हवा और पानी का प्रदूषण, मौसम में असामान्य बदलाव, जंगलों और पेड़ पौधों की कटाई और फूलों वाले प्राकृतिक स्थानों का कम होना, ये सभी कारण मधुमक्खियों के जीवन को कठिन बना रहे हैं। जब उनके रहने, भोजन जुटाने और सुरक्षित उड़ान भरने की जगह कम होती है तो उनकी संख्या पर सीधा असर पड़ता है। ये समस्या केवल मधुमक्खियों तक सीमित नहीं है, ये हमारे लिए भी एक गंभीर संकेत है, क्योंकि मधुमक्खियां जब फूलों से फूलों तक पराग पहुंचाती हैं, तभी अनेक फसलें फलती फूलती हैं। यदि परागण की प्रक्रिया कमजोर पड़ती है तो फलों, सब्जियों, बीजों और कई कृषि उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसका असर किसान की मेहनत, उसकी आमदनी, बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और आम लोगों के पोषण पर भी पड़ सकता है। मधुमक्खियां हमें समझाती हैं कि प्रकृति में कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं होता। हर जीवन, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, इस विशाल प्राकृतिक संतुलन की एक जरूरी कड़ी है। यदि एक कड़ी कमजोर होती है तो पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

मधुमक्खियां दोस्तों ये भी प्रकृति की ही नन्ही संतानें हैं, जिनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि हम मधुमक्खियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने घर, बालकनी, छत या बगीचे में स्थानीय फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं। कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, खेतों में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, पानी का छोटा सा सुरक्षित स्रोत रखें ताकि गर्मियों में पक्षियों और छोटे जीवों को राहत मिल सके, और सबसे जरूरी प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। हम जब मधुमक्खियों को बचाते हैं तो केवल एक जीव को नहीं बचाते बल्कि अपनी फसलें, अपना भोजन, अपना पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। दोस्तों प्रकृति भी हमें सितारों जैसी सुंदर दुनिया देती है, बस हमें उसके संतुलन को बनाए रखना होता है। मधुमक्खियों का जीवन हमें अनुशासन, परिश्रम और सामूहिकता सिखाता है। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां मिलकर काम करती हैं। कोई रस लाती है, कोई छत्ते की सुरक्षा करती है, कोई नई मधुमक्खियों की देखभाल करती है। ये सामूहिक श्रम हमें बताता है कि बड़े लक्ष्य हमेशा साथ मिलकर ही पूरे होते हैं। किसानों के लिए मधुमक्खियां प्राकृतिक साथी हैं। मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग भी ग्रामीण आजीविका का अच्छा साधन बन सकता है। इससे शहद, मोम और अन्य उत्पाद मिलते हैं, साथ ही खेतों की उपज में भी सुधार होता है।

तो दोस्तों, आज विश्व मधुमक्खी दिवस पर हमने जाना कि मधुमक्खियां केवल शहद बनाने वाली नन्ही जीव नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सचमुच प्रकृति की नन्ही श्रमिक हैं जो बिना थके बिना रोके फूलों से खेतों तक जीवन का संदेश पहुंचाती हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम पेड़ पौधों को बढ़ावा देंगे, फूलों को बचाएंगे, रसायनों का अनावश्यक उपयोग कम करेंगे और मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में अपना योगदान करेंगे। क्योंकि मधुमक्खियां बचेंगी तो फूल खिलेंगे तो फसलें आएंगी और फसलें आएंगी तो जीवन मुस्कुराएगा। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य, लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। श्रोताओं, समय है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप

0: से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओ, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
1: जी जी जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
0: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
2: Hello children.
3: Hello ma'am.
4: Hello ma'am.
2: Hello, hello. How are you all?
3: We are fine ma'am.
4: I am fine ma'am. How are you ma'am?
2: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
3: Yes, ma'am.
4: Okay, ma'am.
2: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
3: Yes, ma'am.
5: Pets are so lovely.
2: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
2: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
2: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
2: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
2: Oh, that's so exciting, isn't it?
3: Yes, ma'am.
2: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?

0: दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे।
1: हुँ?
2: मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू।
2: हम्म,
1: तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

श्रोताओं, आपको बता दें, आज सुमित्रानंदन पंत जयंती है। सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने अपनी कविताओं में पहाड़ों, बादलों, फूलों, चांदनी और प्रकृति की सुंदरता को बहुत कोमल और भावपूर्ण भाषा में चित्रित किया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, इसलिए हिंदी कविता को कल्पना, सौंदर्य, संगीतात्मकता और भावुकता देने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम विविधा में आप सुन सकते हैं वार्ता पंत के काव्य में कल्पना और भावनाओं का संतुलन। वार्ताकार होंगी डॉ. प्रीति यादव।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म दिल चाहता है से, कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, शंकर एहसान लॉय की धुन। अगला गीत है फिल्म जब वी मेट से सोनू निगम और जावेद अली के युगल स्वरों में, प्रीतम की धुन पर बोल है इरशाद कामिल के।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम नए तराने को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। जावेद अख्तर की शब्द रचना है, मदन मोहन की संगीत रचना, फिल्म का नाम है वीर ज़रा।

हिमेश रेशमिया, कृष्णा और अहीर को आपने सुना फिल्म आशिक बनाया आपने में। समीर की रचना को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम नए तराने की आखिरी पेशकश है शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और कैरालिसा की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय की धुन पर बोल है जावेद अख्तर के। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओ, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि

0: हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe economic corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ahn Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation, with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation." The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University, and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defence capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle-launched precision-guided missile, marking a significant achievement for the country's defence sector. The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Centre Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defence manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations.

0: कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई। मरकजी वजीरे दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई इस मीटिंग के बाद वजीरे आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मीटिंग में अवामी बहबूद, बेहतरीन इंतजामिया, मंतकाई तरक्की, इंसदाद तगजिये की कमी, स्कूल ड्रॉप आउट में कमी लाने, जिनसी जराइम में 100% कन्विक्शन यकीनी करने और रियासती सतही साइबर हेल्पलाइन जैसे अहम मौजू पर मानीखेज बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहफ़ के मद्देनज़र रेबीज से मुतासर, लाइलाज बीमारी से मुतासर या बेहद खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की इजाज़त दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: रियासत में शदीद गर्मी से और लू से अवामी जिंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी रियासत के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में बतरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का कयास है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शदीद गर्मी और लू के कहर को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, महकमा सेहत, महकमा तवानाई और सभी मुतल्लिका राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के अहकाम दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ बांदा पूरे मुल्क में सबसे गर्म जिले के तौर पर दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने 21 मई तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के बाद महकमा सेहत अलर्ट मोड में आ गया है। नायब वजीर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अस्पतालों में मुमकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए

एडिशनल बेडों का इंतजाम किया जाए। जिंदगी बचाने वाली दवाइयों समेत जरूरी अद्वियात का वाफिर जखीरा रखने के लिए कहा गया है। दरियस्ता जिला कानपुर शहर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी तालीमी बोर्डो के जरिए चलाए जा रहे प्री प्राइमरी से लेकर दर्जा 8वीं तक के सभी स्कूलों में फौरी निफास से 31 मई तक गर्मी की तातील का ऐलान किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में पूरी ईमानदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने अहकाम दिए कि गुज़िश्ता इम्तिहान के अमल में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान सख्त हिफाजती कवानीन के तहत महफूज बगैर किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने दर्जा 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 की जांचशुदा कॉपियों की स्कैन की गई कॉपियों के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23

0: नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में पूरी ईमानदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने अहकाम दिए कि गुज़िश्ता इम्तिहान के अमल में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान सख्त हिफाजती कवानीन के तहत महफूज, बगैर किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने दर्जा 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 की जांचशुदा कॉपियों की स्कैन की गई कॉपियों के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और अमरोहा में गुज़िश्ता रात गजरौला थाना हलके में दिल्ली लखनऊ शाहराह 9 पर तेज रफ्तार कार को नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद मगरबी बंगाल के बाशिंदे बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स बरेली का रहने वाला था। हादसे में जख्मी दोनों अफराद को हायर सेंटर में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरियास्ता एक दीगर हादसे में आज अलस सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक फिर जहां भाग हो गया, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफई PGI में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। समय है हमारी बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार का।

आपके पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में मैं निकिता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। बहनों, जब भी हम शहद का नाम सुनते हैं ना, मन में मिठास भूल जाती है ना, मीठी मीठी मिठास। बचपन में दादी नानी अक्सर कहती थी, सुबह एक चम्मच शहद खा लो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये छोटी सी मधुमक्खी जो फूलों पर मंडराती दिखाई देती है, वास्तव में हमारी पूरी दुनिया के लिए कितनी बीमार होने पर शहद राहत देता है, गले की खराश में आराम देता है और शरीर को ताकत भी देता है। पर शहद से भी ज्यादा जरूरी है वे मधुमक्खियां जो इसे बनाती हैं। मधुमक्खियां केवल शहद नहीं बनाती, वे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। खेतों में फसलें उगाने में, फूलों को फल बनने में और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मधुमक्खियां ना रहे, धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होने लगेंगे, फसलें प्रभावित होंगी और इंसान का जीवन भी कठिन हो जाएगा। इतनी छोटी सी जीव और इतना बड़ा काम, वह बिना शोर किए, बिना किसी लालच के दिन भर मेहनत करती है, इंसानों को मिठास देती है और बदले में सिर्फ सुरक्षित प्रकृति चाहती है। आज इंसान अपने स्वार्थ में पेड़ काट रहा है, खेत में दवाइयाँ डाल रहा है, जिससे मधुमक्खियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। केवल मधुमक्खियों का नुकसान नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान है। हमें समझना होगा कि यदि हमें शहद चाहिए तो मधुमक्खियों को बचाना ही होगा, यदि हरियाली चाहिए तो प्रकृति से प्रेम करना ही होगा, और यदि मानवता को बचाना है तो इन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करनी होगी जो चुपचाप हमारे जीवन को सुंदर बना रहे हैं। बहनों, मधुमक्खियां हमें एक और सीख देती है, पता है क्या? मिलजुल कर रहना, मेहनत करना और दूसरों के जीवन में मिठास खोलना। सच तो ये है कि शहद मनुष्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन मधुमक्खियाँ पूरी मनुष्यता के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, आज के समय में लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा देते हैं। हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपना दुख है, अपनी थकान है, लेकिन फिर भी इंसान सबसे ज्यादा तरसता है तो बस इस बात के लिए कि कोई उसे समझे, बिना रोके टोके उसकी बात सुने। हम रोज सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरों के पीछे छिपे दर्द को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कोई पूछे, तुम सच में ठीक हो ना? लेकिन सच ये भी है कि हर बात हर किसी से कही नहीं जाती। कई बार शब्द सही होते हैं मगर तरीका गलत हो जाता है और रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बहनों, कहने का सलीका केवल बोलने का तरीका नहीं होता, वह सामने वाले के दिल का सम्मान होता है। जब शब्द

0: नरमी होती है ना, तो गुस्सा भी समझ में बदल जाता है। जब बात प्यार से कही जाती है तो छोटी सी सलाह भी दुआ जैसी लगती है। आज लोग सच तो बोलते हैं, पर सच के साथ संवेदना रखना भूल गए हैं। किसी की गलती बतानी हो तो अपमान कर देते हैं, किसी को समझाना हो तो आवाज़ ऊंची कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमने गलत क्या कहा। गलत शायद शब्द नहीं है, पर उन्हें कहने का तरीका दिल दुखा जाता है। एक मीठा शब्द थके हुए इंसान को हिम्मत दे सकता है, एक नरम लहजा टूटे हुए दिल को संभाल सकता है, और एक अपनापन भरा संवाद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। रिश्ते बहस से नहीं, एहसास से चलते हैं। घर केवल दीवारों से नहीं, बोलचाल की मिठास से बनता है, और इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावना से होती है। इसीलिए शायद सच ही कहा गया है कि कहने का हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है, वरना कड़वे शब्द सच होकर भी दिलों में उतर जाते हैं। आइए इसी के साथ बात करते हैं वैशाली सक्सेना जी से और जानते हैं बच्चों की भाषा और विचारों का व्यक्तित्व पर असर के बारे में। आकाशवाणी आगरा में वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निकिता जी।
0: वैशाली जी, भाषा का हमारे विचारों और हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी बच्चे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आपकी नजर में क्या कारण है कि बच्चे अपनी भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं?
1: निकिता जी, बच्चे कम उम्र से ही अपने आसपास के हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। एक मैच्योर इंसान और आसपास की घटनाओं को जो देखता है पहले, फिर समझता है, फिर रिएक्ट करता है। लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते, वह जो देख रहे होते हैं उसकी नकल ही करते हैं। और अगर आसपास हो रही घटना से बच्चा बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो जाए तो वो हूबहू उसी तरीके से अपना लेता है उसे। तो जब वो कोई बच्चा अभद्र भाषा सुनेगा नहीं, तब तक वो कैसे सीख सकता है? अब गौर करने वाली बात यह है कि बच्चों की भाषा जो खराब हो रही है निकिता जी, वो किस वजह से हो रही है? क्या उसके परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है, या जिस दोस्तों के साथ जहाँ पर बैठ उठ रहा है वहां पर उसकी भाषा अभद्र है, या बच्चा जो टीवी पे कार्टून देख रहा है या सीरियल देख रहा है उसमें भाषा अभद्र है? तो निकिता जी, सबसे पहले कारण पता लगे कि बच्चों की भाषा खराब क्यों हो रही है। फिर हम साइकोलॉजिकल बात करते हैं तो बच्चों के फ्रस्ट्रेशन की जो बच्चा उसे अपनी डेवलप जो उसकी एज होती है उसमें महसूस करता है। कभी कभी बच्चा गुस्से में कुछ बोल भी देता है, अपने शब्दों का सही चयन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी भाषा खराब होती चली जाती है। इस पर अगर लगाम लगाया जाए तो काफी हद तक सुधार हो सकती है।
0: वैशाली जी, हमें बच्चों के सामने किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा समझदार बने? साथ ही साथ बच्चों की परवरिश से संबंधित कुछ टिप्स भी हमारी बहनें आपसे जानना चाहती हैं।
1: जी निकिता जी, सबसे पहले तो बच्चों में आवाज के वॉल्यूम को किस स्तर पर रखकर अपने बात करनी है या सीखना चाहिए। शुरुआती दौर में से ही बच्चा अगर अपनी आवाज और अपनी भाषा पर कंट्रोल रखेगा तो उसके व्यक्तित्व में बहुत सुधार होगा। निकिता जी, कभी कभी बच्चे अपनी जिद पूरी करने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अक्सर पेरेंट्स उनकी बात सुननी पड़ती है। आप ऐसा ना करें, नहीं तो बच्चे अपनी आवाज को अपने हथियार के तौर पर यूज करेंगे। बच्चों की गलती पर भी उन्हें डांटे नहीं बल्कि नर्म शब्दों से प्यार से समझाएं। अपने वातावरण में भी अगर कोई गहरा मुद्दा है तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने उसे ना उठाएं। कभी कभी हम हंसी मजाक में बच्चों से कुछ ऐसी बातों को हल्के में ले लेते हैं, बच्चों की ऐसी बातों को, जिससे बच्चे सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। जैसे किसी फंक्शन प्रोग्राम में अगर बच्चा अननेसेसरी किसी बातों की जिद कर रहा है, किसी बात की जिद कर रहा है, तो कोशिश करें कि हम आखिर मोमेंट तक बच्चों को प्यार से समझाएं। और एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप बच्चों के सामने एक डील कर लें कि टास्क पूरा होने पर आपको चॉकलेट या कोई मनपसंद चीज आपको दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक परवरिश के तौर पर ही नहीं, इसे आदत ना बनाए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि बच्चों की परवरिश और व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों से संबंधित हर चीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर छोटी सी चीज से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा हो।
0: अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निकिता जी।
0: बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। देश की माटी के बारे में और जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। हमने स्कूल में सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताएं पढ़ी तो होंगी ही ना। पंत जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वे छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और मानवता का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से

विशेष प्रेम था, इसलिए उनकी रचनाओं में पहाड़, पेड़, फूल और बादलों का मनमोहक वर्णन दिखाई देता है। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण थी, जो सीधे दिल को छू जाती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पल्लव, गुंजन और युगांत शामिल हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हैं। इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लोग सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं, काम करवाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी किसी AI से बांटने लगे हैं। लेकिन हर तकनीक के साथ एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि क्या यह इंसान की संवेदनाओं को समझ सकती है? नहीं, पर EcoGPT जैसे विचार की जरूरत महसूस होती है। एक ऐसा AI जो सिर्फ जवाब ना दे बल्कि इंसानी एहसासों को भी समझे, जो केवल जानकारी ना बताए बल्कि बातों के पीछे छिपी चुप्पियों को भी पढ़ सके। आज कई लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में अगर कोई तकनीकी इंसान से इंसानियत के साथ बात करे, उसकी भावनाओं को महत्व दे, उसकी भाषा में उससे जुड़े, तो वह भी तो एक जादुई बदलाव है। EcoGPT का मतलब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा साथी है जो बोलचाल की आसान भाषा में लोगों के साथ जुड़ता है। गांव का व्यक्ति हो या शहर का बच्चा, हर कोई बिना डर और झिझक के अपनी बात कह सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सफल तभी मानी जाएगी जब वह इंसान को मशीन नहीं इंसान ही महसूस कराए, है ना? तो इसी के साथ आइए आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।

0: आइए आनंद लेते हैं कहानी का। डॉक्टर रेखा कक्कर की आवाज में कहानी का नाम है माहौल।
1: सांझ ढलने को आई। लाखन को करीब 30-35 जोड़ी जूतों की तैयार करना बाकी था। कहीं साहब अपने घर न चले जाएं, वह उनसे मिलने को उठा तो सारा शरीर चरमरा उठा। बोझिल कदमों से वह साहब के सामने जा खड़ा हुआ। साहब के चेहरे पर कुछ असामान्य भाव उभर आए, सवालिया नजरें घूरने लगीं। साहब, जरा बाहर एक कप चाय पीने चला जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, काम क्या तेरा बाप करेगा? बड़ा आया, चाय पी आऊं। नाराज होते हुए साहब ने झल्ला कर कहा, चल जा, जल्दी आना, सारा काम आज ही पूरा करना है। चाय के खोखे पर लाखन बार बार चाय का गिलास लेने को हाथ बढ़ाता, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद लोगों के हाथ में चाय का गिलास पहले आ जाता। वह परेशान होने लगा, यह सोचकर कि जरा भी देर हुई तो साहब के क्रोध का सामना कैसे करेगा। ननकू भैया, तनिक हमका चाय पिला दो, देर हो जायी तो साहब डटिए, लाखन ने चाय वाले से कहा। हाँ हाँ काहे नहीं, ये लो गिलास पकड़ो। ननकू ने झट लाखन के हाथ में गर्म चाय का गिलास पकड़ा दिया। जल्दी जल्दी प्लेट में चाय उंडेल कर पीने लगा। वापस आकर साहब के सामने खड़ा हो गया। अब क्या है? साहब के तेवर देखने लायक थे। साहब, कुछ एडवांस की जरूरत है, माँ बीमार है, दवाई लानी है। मैं सब समझता हूँ। नहीं नहीं साहब, आपकी कसम, माँ के लिए दवाई लानी है। इस बार साहब ने एडवांस में उसके सामने 50-50 के नोट फेंक दिए। लाखन को लगा कि वह एडवांस नहीं, भीख मांग रहा है। बीते हुए दिन उसकी आंखों में घूमने लगे। तमाम खोलियों में से एक में सुमनिया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सुमनिया सरल स्वभाव की बहुत मिलनसार थी। लाखन वहीं पास की खोली में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुमनिया लाखन की माँ के पास देर तक बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और फिर शाम को अपनी खोली में आ जाती। धीरे धीरे सुमनिया जवानी के दहलीज पर पहुँचने लगी। अब आसपास के लोगों को रोज रोज उसका लाखन के घर जाना खटकने लगा। हरदम उसे शक की निगाहों से देखना और कोई कहानी गढ़कर उस पर लांछन लगाने की सोचना। लाखन तो सुबह काम पर जो निकलता तो ओवर टाइम करके रात देर से ही घर लौटता। बूढ़ी माँ उसके इंतजार में जागती रहती, उसे खाना खिलाकर सोती। हर रोज रात और सुबह का यही सिलसिला चलता। वह दिन काल बनकर आया था। झोपड़ी झुक्की खोली के लोगों में कुछ कहा सुनी हुई। सुलेमान गलत संगत में पड़ चुका था, किसी को मालूम न था। लाखन की माँ, सुमनिया तथा खोली के और लोगों ने मिलकर सुलेमान को समझाया, तू इस चरस कोकीन काहे के बेचने के धंधे में फंसा है, तू ये सब छोड़। भाई लोग किसी के नहीं होते, किसी दिन तू जेल पहुंच जाएगा और भाई लोगों को क्या, वो दूसरा आदमी ढूंढ लेंगे। सुलेमान बोला, जब धंधे में पड़ा था ना समझ था, और अब समझ आई है तो वहां से निकलना मुश्किल है। जान तो दोनों तरफ से जानी है,

0: छोड़ूंगा तो भाई लोगों के हाथों मारा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा तो एक न एक दिन पुलिस ले जाएगी। दूसरे दिन लाखन अपने काम पर चला गया। सुमनिया घर का काम काज निपटाकर लाखन की माँ के पास बैठ सुलेमान की बातें करने लगी। कान लगा, खोली के बाहर कुछ ने उसकी बातें सुन नमक मिर्च लगा भाई लोगों तक पहुंचा दिया। बस्ती में गलत ढंग से बात को फैलाया कि सुमन की चाल चलन ठीक नहीं है, वह भाई लोगों के लिए काम करती है। सुमनिया को जब पता चला वह हक्का बक्का सी देखती रह गई उन लोगों को जो सुमनिया को बुरी नजरों से देखते थे। पुलिस आई पूरे घर की तलाशी लेने, हर किसी की खोली की तलाशी ली जाने लगी। बेचारे निर्दोष गरीबों के पास मिलेगा भी क्या, 2 जून की रोटी तो मुश्किल से जुटा पाते हैं। डंडा फटकारते भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी कि तभी लाखन घर आ पहुंचा। वहां ऐसी भीड़ देखकर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। भाई लोगों के लिए क्या दिन क्या रात, अपने आदमी बस्ती में भेज सुलेमान का खून करवा दिया। गोली की आवाज सुनते खोली से बड़े बूढ़े निकल आए। पर्दे की ओट से सुमनिया ने भी सब देखा। भाई के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें कई बेगुनाह मारे गए। उनमें सुमनिया की माँ, लाखन की माँ, पड़ोस का बच्चा, कईयों की जान गई। जब लाखन घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर भी कुछ समझ न सका। जो सबकी जुबान पर था वह बस सुमनिया को कोस रहे थे, इसी के कारण यह खून खराबा हुआ है, न सुलेमान को समझाती न कुछ होता। लाखन को इस समय केवल मृत लोगों को शमशान तक ले जाने की चिंता थी। पुलिस की जीप तेज सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, क्योंकि मामला सामान्य मौत का तो था नहीं, लिहाजा पुलिस केस बन गया। उन्होंने लाशें अपने कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन शाम तक लाशें मिली, तब कहीं उन्हें शमशान ले जाया गया। कुछ दिनों बाद जब वातावरण सामान्य हुआ तब लाखन ने हिम्मत कर सबके सामने सुमनिया का हाथ जीवन भर के लिए थाम लिया। सुमनिया को सहारा मिल गया। लाखन दुगने जोश से काम करने लगा, ओवर टाइम करता, 4 पैसे ज्यादा कमाता और सुमनिया को हर संभव खुशी देता। चुनाव के दिन आ गए, वह भी वोट देगी। आपस में दोनों बात करते, वोट उसे देंगे जो पार्टी हमारे इधर की खोली को पक्का मकान बनाकर देगी। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता वैसा होना चाहिए। सड़क पर हर पार्टी के झंडे सज गए, बड़े बड़े पोस्टर पर नेताओं की आदमकद तस्वीरें बनी। लाखन जानता है यही नेता जब जीत कर आते हैं तब बस अपनी जेबें भरते हैं, सारे वायदे ताक पर रख देते हैं, न कहीं पानी के लिए नल लगते हैं, यदि लगे भी तो बहुत कम, उनमें भी कुछ ही दिन पानी आता है। हम गरीबों का इन नेताओं से क्या लेना देना, लाखन समझाता है, लेकिन सुमनिया जिद करती है कि वह वोट देने जरूर जाएगी। कुछ दिनों इंतजार के बाद चुनाव का दिन आया। सुमनिया और लाखन उत्साह से भरे वोट देने गए। एक तो भयंकर गर्मी, दूसरे वोट देने वालों की लंबी कतार। जब तक इनका नंबर आया वहां तो बूथ कैप्चरिंग हो गई। आनन फानन में शांति ने हिंसा का रूप ले लिया। किसी तरह दोनों लुकते छिपते जान बचाकर घर आए और देश की हालत पर रोने लगे।
1: इसी के साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार यही समाप्त होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलमा आगा की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Center's decision to undertake caste enumeration. Severe heat wave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

0: राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे, और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल

0: एलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति है पंडित निखिल बनर्जी का धुन मांड में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का धुन मांड में सितार वादन। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन का पूर्वी धुन में शहनाई वादन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन का पूर्वी धुन में शहनाई वादन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म अंदाज से मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे नौशाद की धुन। अगला गीत है फिल्म हमराही से, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत है हसरत जयपुरी का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आपने सुना फिल्म हावड़ा ब्रिज में। ओपी नैयर की धुन पर बोल थे कमर जलालाबादी के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अलका याग्निक की आवाज में यह गीत था फिल्म सिर्फ तुमसे। समीर के शब्दों को संगीत में ढाला था नदीम श्रवण ने। अगला गीत है फिल्म बादशाह से, अभिजीत की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल हैं अनु मलिक की धुन।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब

0: सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम की गुंजन को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम को फिल्म बॉर्डर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना है, अनु मलिक की संगीत रचना।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

सायकालीन इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन

0: एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
0: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 5:30 पर समय रहेगा युवा वर्ग के श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय

फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा पारंपरिक से डिजिटल संपर्क की ओर उन्मुख आज का युवा। वार्ताकार होंगी मानसी वर्मा। जानेंगे किम्बरले प्रक्रिया के बारे में। जीने की कला सेगमेंट में आप सुनेंगे प्रकृति को करीब से समझें। ताकत वतन की हमसे है सेगमेंट में एक पेड़ मां के नाम।

ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक आप सुनेंगे शाम 6 बजे। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा स्वच्छ भोजन सुरक्षित जीवन। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा परागण करने वाले कीटों व जीवों का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान। साथ ही सुनेंगे नई किस्में, लोकगीत, मौसम और मंडी भाव। मजदूर मंडल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जीवन चलने का नाम। साथ ही सुनेंगे रज्जाक अहमद का काव्य पाठ। साथ ही सुनेंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर और सेहत टिप्स। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता जिसका विषय होगा पंत के काव्य में कल्पना और भावनाओं का संतुलन। वार्ताकार होंगी डॉ. प्रीति यादव। ये वार्ता आप सुमित्रा नंदन पंत जयंती के उपलक्ष में सुनेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। रात्रि 8:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां। आप प्रस्तुत करेंगे राग बिहाग में ख्याल गायन। ये थी हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। आप प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है खानदान। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत दिया है रवि ने।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अमर प्रेम। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत बजरंगी भाईजान फिल्म से।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का युवाणी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं अपेक्षा शाक्या को। दोस्तों, इन दिनों गर्मी अपने पूरे तेवर में है। लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के अलर्ट्स के बीच हमारा रूटीन भी काफ़ी अनसर्टेन होता जा रहा है। ऐसे मौसम में लोग जहाँ राहत और सुकून तलाशते हैं, वहीं प्रकृति, स्वास्थ्य और अपने आसपास के माहौल को लेकर जागरूक रहना भी पहले से ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है। दोस्तों, अगर हम प्रकृति को समझ लें तो

0: काफी समस्या हल हो सकती है। आज हम ऐसे ही कुछ विषय पर बात करेंगे क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। दोस्तों, कहते हैं अगर मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाएं तो इंसान का सर्वाइवल भी ज्यादा वक्त तक पॉसिबल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? आप जरा सोचिए, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जवाब हम देंगे लेकिन थोड़ी देर में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज की चर्चा के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रीय सम्मान की जो सेवा, समर्पण और मानवता की भावना को समर्पित है। ये सम्मान है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो सीधे तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरों की देखभाल में अपना पूरा समय और एनर्जी लगा देते हैं। दोस्तों, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स की इम्पोर्टेंस हमें तब समझ आती है जब हम कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने वाले लोग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। यू रिमेंबर दैट नर्स और हेल्थ केयर वर्कर हु जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स यू टू इंजेक्ट दैट इंजेक्शन फुल ऑफ मेडिसिन। इमेजिन हाउ हार्ड इट वुड बी अगर हमें बस ट्रीट किया जाए बिना हमारी केयर किए। इट वुड बी पेनफुल, राइट? और इवन वर्स, वो लोग जो बिना स्पॉटलाइट के हर दिन लोगों की केयर करते हैं, कभी इमरजेंसी में, कभी नॉर्मल ट्रीटमेंट में, लेकिन हर बार पूरी जिम्मेदारी के साथ। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ताकि नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स को एक फॉर्मल अप्रिशिएशन मिल सके। इस अवार्ड का नाम रखा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर माना जाता है। दोस्तों, उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान रात रात भर घायल सैनिकों की केयर की थी, और यही स्पिरिट आज भी नर्सिंग प्रोफेशन में दिखती है, केयर, पेशेंस और डेडिकेशन। दोस्तों, ये अवार्ड हर साल सेलेक्ट किए गए नर्सेस को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम से सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि लोगों को जिंदगी से रियल डिफरेंस बनाया है। दोस्तों, इस अवार्ड के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जो रजिस्टर्ड नर्सेस हों, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स हों या लेडी हेल्थ विजिटर्स के तौर पर काम कर रहे हों। ये लोग सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, डिफेंस सर्विसेज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। इनकी नॉमिनेशन सीधी नहीं होती बल्कि इनके नाम हेल्थ डिपार्टमेंट्स के थ्रू भेजे जाते हैं। इसके बाद अलग अलग लेवल्स पर स्क्रीनिंग होती है और फाइनल सिलेक्शन नेशनल नाइटिंगेल अवार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अवार्ड उन लोगों की मेहनत और समर्पण की पहचान है जो हर दिन बिना किसी चर्चा के दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। दोस्तों, इस सेगमेंट को यही विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की वार्ता की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक बदलते दौर की, बदलते रिश्तों की और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हमारे युवाओं की सोच की। आइए सुनते हैं मानसी वर्मा को। उनकी वार्ता का विषय है पारंपरिक से डिजिटल संपर्क को, डिजिटल संपर्क की ओर उन्मुख आज का युवा।
1: समय का चक्र निरंतर गतिशील है। समाज, संस्कृति और संचार के स्वरूप समय के साथ बदलते रहे हैं। कभी ऐसा समय था जब संपर्क का अर्थ था आमने सामने बैठकर बातचीत करना, चिट्ठियां लिखना, रिश्तों को समय देना और संवाद के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना। लेकिन आज उसी संपर्क का स्वरूप तेजी से बदलकर डिजिटल हो गया है। आज का युवा, जो इस परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है, वह पारंपरिक संपर्क के तरीकों से हटकर डिजिटल माध्यमों की ओर उन्मुख हो चुका है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। पारंपरिक संपर्क केवल संवाद

का माध्यम नहीं बल्कि ये रिश्तों की गहराई का आधार भी है। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना, दोस्तों के साथ आमने सामने मिलना, रिश्तों में समय और संवेदनाओं का निवेश करना, पत्र लिखना और उसकी प्रतीक्षा का भाव, इन सब में एक धैर्य, एक जुड़ाव और एक सजीवता थी। संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें भाव, स्पर्श और संवेदनाएं भी शामिल थीं। आज इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के आगमन ने संपर्क के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज का युवा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। वीडियो कॉल, चैट, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़ता है। जानकारी और संवाद के लिए डिजिटल माध्यमों पर निर्भर है। यह परिवर्तन तेज, सुविधाजनक और व्यापक है। डिजिटल संपर्क के कई सकारात्मक पहलू हैं, जैसे इंस्टेंट कनेक्टिविटी। अब संदेश भेजने में सेकंड भर का समय नहीं लगता, दूरी का तो जैसे कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। वैश्विक जुड़ाव, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आज कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकता है। सूचना की उपलब्धता ने ज्ञान और जानकारी तक आसानी से पहुंचने के जरियों से युवाओं को अधिक जागरूक बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार और नेटवर्किंग के नए अवसरों का तेजी से विस्तार हुआ है। जहां डिजिटल संपर्क ने सुविधाएं दी हैं, वहीं इसने कुछ गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। ऑनलाइन बातचीत अक्सर औपचारिक और सतही होती है। लाइक और इमोजी ने भाव की गहराई को कम कर रिश्तों में मतभेद ला दिया है। युवा हजारों लोगों से जुड़े होने के बावजूद अकेलापन महसूस करता है और सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। डिजिटल संवाद में भावनाओं की अभिव्यक्ति सीमित होने से संवेदनशीलता में कमी आ जाती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर युवा स्वयं को कम समझने लगता है। तुलना ने आत्मसंदेह को जन्म दिया है। एक शोध में पाया गया है कि आज का युवा औसतन 7 घंटे मोबाइल फोन पर बिताता है। उसी युवा से पूछा जाए कि वह कितने घंटे अपने परिवार के साथ बिताता है तो शायद जवाब 1 से 2 घंटे या उससे भी कम होगा। डिजिटल संपर्क का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे एंजाइटी यानी चिंता, डिप्रेशन यानी अवसाद, डिजिटल एडिक्शन यानी लत व नींद की समस्याएं बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। युवा लगातार स्क्रीन पर रहने के कारण वास्तविक दुनिया से दूर होता जा रहा है। पहले परिवार संवाद का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब एक ही घर में रहते हुए भी लोग अलग अलग स्क्रीन में व्यस्त होते हैं। पारिवारिक बातचीत कम हो गई है, भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है। डिजिटल संस्कृति ने पारंपरिक मूल्यों को भी चुनौती दी है। धैर्य की जगह तत्कालिकता, गहराई की जगह मतभेद, व्यक्तिगत संवाद की जगह वर्चुअल संपर्क, यह बदलाव अब सांस्कृतिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल युग में युवा अपनी पहचान को लेकर भी संघर्ष कर रहा है। वह ऑनलाइन इमेज तो बनाने में व्यस्त है, परंतु वास्तविक व्यक्तित्व और डिजिटल व्यक्तित्व में अंतर बढ़ रहा है, जो कि युवा नज़रअंदाज कर रहा है। आत्म मूल्यांकन अब बाहरी मान्यताओं जैसे लाइक्स, कमेंट्स, इन पर निर्भर हो गया है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि पारंपरिक संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी भूमिका कम होती जा रही है और डिजिटल संपर्क उसका स्थान ले रहा है। अगर गौर करें तो समस्या डिजिटल माध्यम नहीं बल्कि उसका असंतुलित उपयोग है। संतुलन बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, आमने सामने बैठकर संवाद को प्राथमिकता दें, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें और स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व पर ज़्यादा ध्यान दें। युवाओं को सही दिशा देने के लिए स्कूलों में और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता, संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। भविष्य पूरी तरह डिजिटल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह आवश्यक है कि तकनीक हमारी सहायता करे ना कि हमारा स्थान ले। आज का युवा एक ऐसे दौर में जी रहा है जहां पारंपरिक और डिजिटल दोनों ही संसार उसके सामने हैं। डिजिटल संपर्क ने उसे गति, सुविधा और अवसर दिए, लेकिन पारंपरिक संपर्क ने उसे संवेदनाएं, गहराई और संबंध दिए। वर्तमान में ज़रूरत इस बात की है कि युवा इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, ताकि वह तकनीक का उपयोग करते हुए भी अपनी मानवता, संवेदनशीलता और रिश्तों की गर्माहट को बनाए रख सके। क्योंकि इस नए डिजिटल भारत में हमारी जो परंपराएं हैं वह कहीं खोनी नहीं चाहिए। यह सब एक ऐसी धरोहर है जो किसी भी सोशल मीडिया ऐप में नहीं मिल सकती। तकनीक हमें जोड़ती है, लेकिन रिश्ते हमें पूर्ण बनाते हैं।

0: क्योंकि स्क्रीन बंद हो जाती है, नेटवर्क चले जाते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है। परंतु रिश्तों को अगर सींचते रहो तो वे कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम केवल स्क्रीन से जुड़े रहेंगे तो दिलों की दूरी कौन मिटाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पारंपरिक हो या डिजिटल, संपर्क का मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, दिल से दिल तक। धन्यवाद
1: दोस्तों, ये थी आज की वार्ता, जिसमें हमने बात की परंपरागत सोच से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते बदलाव और आज के युवा की बदलती सोच के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसको बदला जा सकता है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। उम्मीद है मानसी की वार्ता आपको भी अपने आसपास के बदलते समय को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करेगी। लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, एक छोटे से अंतराल के बाद आपका स्वागत है। तेज गर्मी, लगातार बढ़ते तापमान और बदलती लाइफस्टाइल के बीच आजकल हम अक्सर ये फील करते हैं कि नेचर से जुड़ाव सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि जरूरत भी है। दोस्तों, इसी से मुझे याद आता है कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था। वो सवाल था कि अगर मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाए तो इंसान ज्यादा दिन तक सरवाइव क्यों नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्योंकि बीज पॉलिनेशन का बहुत बड़ा काम करते हैं। दुनिया की कई फूड क्रॉप्स उन पर डिपेंड करती हैं। अगर बीज ना रहे तो फूड प्रोडक्शन और बायोडाइवर्सिटी दोनों पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारे सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको समझ जरूर आया होगा। दोस्तों, सुबह की थोड़ी फ्रेश हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज या कुछ देर खुले वातावरण में बिताया गया समय, ये छोटी चीजें हमारे मूड और मानसिक संतुलन पर गहरा असर डालती हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जो लोग एक 9-to-5 जॉब का हिस्सा होते हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब कल्चर का पार्ट है, वो छुट्टी प्लान करके नेचर को क्यों चूज करते हैं? जैसे ट्रैकिंग, माउंटेन्स, बीचेस, फॉरेस्ट वॉक, ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल और लगातार डिजिटल एनवायरनमेंट के बीच नेचर लोगों को एक तरह का मेंटल रिफ्रेश और बैलेंस फील कराता है। शायद यही वजह है कि आज बेस्ट ट्रेवल लोकेशंस की बात हो या शॉर्ट ब्रेक्स की, लोग ऐसी जगह को ज्यादा पसंद करते हैं जहां शांति, ग्रीनरी और नेचुरल सराउंडिंग्स मिल सके। कई बार हम नेचर को सिर्फ मौसम या सीनरी की तरह देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी डेली लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यही वजह है कि अब लोग गार्डनिंग, प्लांटेशन और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आखिर नेचर कोई लग्जरी एस्केप नहीं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए आज अगले सेगमेंट में ताकत वतन की हमसे है में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभियान की जिसने पर्यावरण संरक्षण को एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ जोड़ने की कोशिश की है। वो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम। इसी अभियान का संदेश सीधा और सरल है, प्रकृति की देखभाल को अपनी जिम्मेदारी और भावनाओं से जोड़ना। एक पेड़ लगाना छोटा कदम जरूर लग सकता है, लेकिन बढ़ती गर्मी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के दौर में इसका इम्पोर्टेंस काफी बड़ा है। आज कई जगह लोग अपनी माँ के नाम पर पौधे लगाकर नेचर और फैमिली इमोशंस दोनों के साथ जोड़ रहे हैं। यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ पॉलिसीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जुड़ाव का भी हिस्सा बनता जा रहा है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, और जिम्मेदारी सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं बल्कि हर उस चीज से सोच समझ कर कदम उठाने की है जो हमारे एनवायरमेंट और समाज को अफेक्ट करती है। इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे आइए जाने सेगमेंट की, जहां हम समझेंगे किमरली प्रोसेस के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं।

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसे कहते हैं किम्बर्ली एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जो एथिकल ट्रेड और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। दोस्तों आप लेकिन क्या जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब कुछ डायमंड्स ऐसे इलाकों से आते थे जहां संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा मिलता। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकने के लिए इस प्रक्रिया के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से और ट्रांसपोर्ट किए जाएं वो वेरीफाइड और कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल चेक सिस्टम है जो ये देखता है कि व्यापार किसी भी तरह की हिंसा या युद्ध फंड ना करे, और इसी वजह से आज इंटरनेशनल डायमंड ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने में इस प्रक्रिया की अहम भूमिका होनी चाहती है। ये सिस्टम अगर हम समझें तो ये मूवीज़ में भी काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ का ये फेवरेट स्टोरी होता है। जैसे अमिताभ बच्चन की कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जैसे डॉन, कालिया जैसी क्राइम थ्रिलर फिल्म्स अगर आपने देखी होगी तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे। तो ये थी आज की सेगमेंट की छोटी सी रोचक जानकारी, और ये था हमारा आज का कार्यक्रम। ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे पसंदीदा कार्यक्रम यू पाने। आप सुन रहे थे अपेक्षा शाक्या को, जहाँ हमें नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा समझने की कोशिश की। अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट समझें तो हीट वेव के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कल शाम 5:30 बजे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आप प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीण में और आज आपके साथ आपकी रेडियो साथी शोभना। भाइयों, तो देख ही रहे हैं कि कितनी भयंकर हो रही है, और ऐसे में खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तेज धूप और बढ़ते तापमान से डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और यानी कि लू लगने की समस्याएं हम हो सकती है। और जब बात हो हमारे स्वास्थ्य की, तो आजकल सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। और अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से आता है? अच्छे और साफ भोजन से। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, स्वच्छ भोजन

हमें हमेशा याद रखना चाहिए, स्वच्छ भोजन सुरक्षित जीवन। देखिए हमारे किसान रात मेहनत करते हैं, धूप में खेत में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर अन्न उगता है। अगर हम ही अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए जितनी मेहनत खेत के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है साफ और सही खाना खाना। आजकल क्या होता है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में बाहर का तला भुना खाना, बासी, इससे बीमारी होती है, गैस भी होती है, कमजोरी और कई तरीके की दिक्कत हमको हो सकती है। कई बार तो गंदा पानी और खराब खाना बड़ी बीमारी की वजह है। किसान साथियों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर का ताज़ा बना खाना खाएं। खाने में हरी सब्जी, दाल, रोटी, दही, सलाद और मौसमी फल तो ज़रूर होना चाहिए। आजकल भाई खरबूजा आ ही रहा है, तरबूज आ ही रहा है, खूब सारा खाइए, उसमें आपको पानी भी मिलता है और आपको फल भी खाने को मिलेगा। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि खाना खाने से पहले हाथ आप ज़रूर धोएं। आप चाहे घर पर हों चाहे खेत पर हों, जब भी आप खाना खाएं तो पानी से हाथ ज़रूर धो लें। खेत से आते ही तो मिट्टी, दवाई या कीटनाशक हाथों में लगे हो सकते हैं। खाना खाने से क्या होता है, बीमारी अगर पानी साफ होगा तो शरीर बड़ी ताकत है और हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छा, ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिले। ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वच्छ और अच्छे भोजन के पीछे जो उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मधुमक्खियां फूलों पर जाकर परागण का काम करती हैं। इससे पौधों में अच्छे आ चुकते हैं। वो सूरजमुखी फल, सब्जियां और कई मधुमक्खियों की मदद से बेहतर उगती हैं। इसीलिए कहा जाता है या कह सकते हैं आप इसको कि मधुमक्खियां हमारे भोजन को बेहतर और प्राकृतिक बनाने में मदद करती हैं। आजकल कीटनाशकों का ज्यादा, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण के कारण मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है और अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो कई फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो किसान साथियों, मधुमक्खियां शहद ही नहीं देती बल्कि खेती और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथियों, हर साल 20 मई को यानी कि आज ही के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और ये दिन इसलिए भी मनाते हैं कि हम मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जाने और जागरूक बने। साथ ही जिस तरीके से हम किसान बकरी पालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, मधुमक्खी पालन भी हमारे लिए कम खर्च में अच्छी कमाई का साधन भी बन सकता है। साथ ही शहद, मोम बेचकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। किसान साथियों,

करने वाले जीवों की रक्षा करने चलिए इस विषय में और अधिक जानने के लिए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान की वार्ता, जिसमें आप सुनेंगे परागण करने वाले जीवों व कीटों का

0: महत्व।
1: किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा से। आज की जो चर्चा करने जा रहे हैं, परागण करने वाले जीवों एवं कीटों के महत्व के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी को बधाई दूंगा, क्योंकि आज विश्व मधुमक्खी दिवस है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रकृति में जीव का अपना विशेष महत्व होता है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन अनेक जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें परागण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। परागण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फूलों के बीज एवं फल बनने की क्रिया पूर्ण होती है। जब किसी पुष्प के पुंकेसर यानी कि एंथर से परागण पॉलन ग्रेन्स उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, तब परागण होता है। यह प्रक्रिया पौधों के प्रजनन का आधार है। यदि परागण ना हो तो अधिकांश पौधों में फल एवं बीज नहीं बन पाएंगे, जिससे खाद्य उत्पादन, वनस्पति विविधता तथा पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आखिर जानते हैं कि परागण क्या है। फूल के पुंकेसर से परागकण का वर्तिका पर पहुंचना परागण कहलाता है। यह पौधों में फल और बीज बनने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। यह दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण तथा पर परागण। पर परागण परागण के प्रकार, स्वयं परागण में एक फूल या पौधे के भीतर ही परागण होता है, जैसे हमारी गेहूं, धान, मटर, टमाटर, मूंगफली फसलें हैं। पर परागण में एक पौधे के फूल का पराग दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है। ऐसे जीवों को परागणकर्ता या पॉलिनेटर कहा जाता है। विश्व की लगभग 75% खाद्य फसलें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक परागण पर निर्भर हैं, जिनमें जो हमारी पर परागण फसलें हैं उनमें मक्का, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, पपीता, खीरा और लौकी वर्गीय फसलें आती हैं। परागणकर्ता कौन है? वे जीव या माध्यम जो परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। अन्य प्राकृतिक माध्यम जिनमें अगर माना जाए तो वायु और जल है। प्रमुख परागकर्ता में हमारी मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, भौरे, मक्खियां, भ्रंग या गुबरेले, ततैया, चींटियां, थ्रिप्स तथा फूलों पर रहने वाले अन्य छोटे कीट भी शामिल हैं। अगर हम पक्षी परागकर्ता की बात करें तो सनबर्ड, हमिंगबर्ड या हनी ईटर पक्षी भी इसमें शामिल हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ स्तनधारी परागकर्ता भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चमगादड़ को परागकर्ता माना जाता है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे आज मधुमक्खियों के महत्व के ऊपर, चूंकि आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। आधुनिक कृषि में मधुमक्खी पालन को कृषि का अभिन्न अंग माना जाता है। मधुमक्खियां प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी परागणकर्ता मानी जाती हैं। इसके शरीर पर सूक्ष्म रोए होते हैं जिन पर परागकण आसानी से चिपक जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। अगर हम बात करें मधुमक्खियों के उत्पादन की तो हमें मिलता है शहद, मधु, मोम, रॉयल जेली मिलती है, प्रोपोलिस मिलता है, परागकण मिलते हैं और साथ ही साथ हमें मधुमक्खी विष भी मिलता है, जो बहुत सारे औषधीय अनुसंधान है उनमें कार्य करता है या हमारे जो आयुर्वेद है उसके अंदर कार्य करता है। किसान भाइयों, शहद उत्पादन के लिए अगर हम बात करें प्रमुख और सामान्य जो मधुमक्खी प्रजातियां हैं उनमें हमारी एपिस डोर्सेटा, एपिस सेराना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, स्टिंग लेस वी और भौरा मधुमक्खी प्रमुख हैं। भौरा मधुमक्खी विशेष रूप से परागकण जो बज पॉलिनेशन होता है उसके लिए प्रसिद्ध है और टमाटर जैसी फसलों में परागण के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफोरा सबसे अधिक प्रचलित और लाभकारी प्रजाति मानी जाती है, जबकि भारत में एपिस सेराना इंडिका भी सामान्य रूप से पाली जाती है। कृषि में मधुमक्खियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे उत्पादन में तो वृद्धि करती है, साथ ही साथ फलों के आकार को भी बढ़ाती है, गुणवत्ता बेहतर बनाती है, बीज पूर्ण रूप से विकसित होता है, तेल की मात्रा अधिक होती है। जैसे तिलहन फसलों में आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन सरसों में या सूरजमुखी में बहुत ज्यादा किसान बंधुओं द्वारा की जाती है, तो तेल की मात्रा अधिक बनाती है, स्वाद एवं आकर्षण में भी वृद्धि करती है। और शोध के अनुसार माना जाए, विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि मधुमक्खियों की उपस्थिति से फसल उत्पादन में लगभग 20 से 200% तक की वृद्धि संभव है। फल, सब्जी एवं तिलहन फसलों में इसका प्रभाव विशेष रूप से अधिक देखा गया है। किसान बंधुओं, इसके साथ साथ परागणकर्ताओं के सामने कई सारे खतरे भी हैं। वर्तमान समय में परागणकर्ताओं के सामने अनेक गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं, जैसे रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मधुमक्खी व अन्य लाभकारी कीटों को नुकसान पहुंचा रहा है। जहरीली दवाओं के छिड़काव से उसकी संख्या और कार्य क्षमता दोनों प्रभावित हो रही हैं।

0: वन कटाई, शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे रोग, परजीवी तथा कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी मधुमक्खियों के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन चुकी है। इन परिस्थितियों में परागणकर्ताओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर तथा किसानों को प्रशिक्षण देकर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैविक खेती अपनाने और कीटनाशकों का सीमित उपयोग करने से परागणकर्ता सुरक्षित रहेंगे। खेतों के आसपास पुष्पीय पौधों एवं वृक्षों का रोपण करना चाहिए ताकि उन्हें भोजन उपलब्ध हो सके। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इनके महत्व के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। बहुत सारे किसान बंधुओं संरक्षण के उपाय भी हैं जो परागणकर्ताओं का संरक्षण आज अत्यंत आवश्यक है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर तथा किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैविक खेती अपनाने से रासायनिक दवाओं का उपयोग कम होगा और परागणकर्ता सुरक्षित रहेंगे। खेतों के आसपास पुष्पीय पौधे लगाने चाहिए तथा फूल आते समय जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक आवासों और वनों का संरक्षण भी जरूरी है। जन जागरूकता कार्यक्रम द्वारा लोगों को परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन में भारत की अनेकों संभावनाएं हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ विविध प्रकार की फसलें एवं फूल उपलब्ध हैं जो मधुमक्खियों के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन, NBHM, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी सुधार हो रहा है। अंत में यह कहा जा सकता है कि परागण करने वाले कीट एवं जीव प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। मधुमक्खियां, तितलियां, भौरे, पतंगे, मक्खियां, भृंग, ततैया, पक्षी एवं चमगादड़ सभी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना ना तो कृषि उत्पादन संभव होगा, ना पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके महत्व को समझें और इसके संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाएं। परागणकर्ताओं की सुरक्षा केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं बल्कि मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास से भी जुड़ा हुआ है। यदि परागणकर्ता सुरक्षित रहेंगे तभी प्रकृति, कृषि और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद किसान बंधुओं।
1: तो किसान साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी ने भी हमें यही संदेश दिया है कि हमें मधुमक्खियों को बचाना है, क्योंकि मधुमक्खियां बचेंगी तभी खेती और जीवन दोनों ही सुरक्षित होंगे। तो किसान साथियों, आइए अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, कभी ज्यादा गर्मी है, कभी कम बारिश, कभी अचानक से तूफान आ जाता है। ऐसे में हमें भी खेती में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हर साल वही पुरानी फसल लगाते रहेंगे तो खर्च तो बढ़ेगा ही और फायदा भी कम ही होगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं सूरजमुखी के बारे में। देखिए भाइयों, सूरजमुखी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गर्मी को काफी हद तक सहन कर लेती है। पानी भी धान जैसी फसल के मुकाबले कम मांगती है। आजकल पानी की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये फसल किसानों के लिए अच्छा विकल्प बन रही है। सरकार ने भी इस साल सूरजमुखी के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है ताकि हमारे जो किसान हैं वो तेल वाली फसलों की तरफ आएं। अब बात करते हैं कि किसानों को इससे क्या फायदा होगा। तो किसान साथियों, कम पानी में अच्छी पैदावार हो सकती है, तेल की मांग तो हमेशा रहती ही है और जल्दी तैयार होने वाली फसल है, साथ ही गर्मी में भी ठीक उत्पादन दे सकती है। अब आप इसे कब बो सकते हैं? वैसे तो सूरजमुखी की जो बुवाई है वो फरवरी से मार्च के बीच में होती है और कुछ जगहों पर ये आपको जून या जुलाई में भी की जाती है। अगर आपके इलाके में पानी थोड़ा सा कम है और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ये फसल आपके लिए अच्छा विकल्प

हो सकती है। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि खेत में जो है ना वो पानी रुकना नहीं चाहिए, समय पर आप हल्की सिंचाई जरूर करें, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेना भी बहुत जरूरी है, और बस शुरुआत में जो खरपतवार आते हैं ना उनकी सफाई आपको कर देनी है। भाइयों, अब खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से ही चलती है, और हमें करनी भी पड़ेगी समझदारी से। और जो किसान समय के हिसाब से नई किस्म और नई फसल अपनाएंगे वही आगे ज्यादा फायदा भी कमाएंगे। जी हाँ किसान साथियों, ये बात एकदम सच है कि आज जैसा जो जीवन है, जो समय है, जो भाग रहा है, अगर हम उसके साथ ताल से ताल मिलाकर नहीं चल पाए तो कहीं ना कहीं हम पीछे ही रह जाएंगे। और सूरजमुखी आप उगाएं, मधुमक्खियां जो है ना वो हमारी सूरजमुखी की फसल को अगर आप उनकी देखभाल करते हैं तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगी, ये हम अभी आपको बता ही चुके हैं। तो मधुमक्खी हमारे जीवन के लिए, हमारी फसल के लिए।

मधुमक्खियां जो है ना, वो हमारी सूरजमुखी की फसल को अगर आप उनकी देखभाल करते हैं तो वो आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगी, ये हम अभी आपको बता ही चुके हैं। तो मधुमक्खी हमारे जीवन के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसान साथियों, आइए अब रुख करते हैं मंडी की तरफ और बताते हैं आपको कि आप अपनी फसल उगाते हैं तो आपको उसका भाव कैसा मिल सकता है। तो बात करते हैं आलू की। तो आलू का भाव है 580 से 740 रुपये प्रति कुंतल, टमाटर 1820 से 3000 रुपये, प्याज 1020 से 1800, भिंडी 1970 से 2200 रुपये, करेला 1920 से 2200 रुपये, लौकी 1420 से 1650 रुपये, खीरा 2020 से 2250 रुपये प्रति कुंतल, वहीं बैंगन 2020 से 1450 रुपये। पत्ता गोभी के भाव इस प्रकार हैं, 670 से 1000, फूल गोभी 720 से 950 रुपये प्रति कुंतल, हरी मिर्च जो कि हमारे खाने का स्वाद बहुत बढ़ाती है, उसका भाव है 3320 से 3600 रुपये प्रति कुंतल, पालक जो कि हमारे शरीर में आयरन की कमी होने ही नहीं देती और हमारी महिलाओं को खासकर से पालक का सेवन करना चाहिए, तो उसका भाव हम आपको बताते हैं 800 से 950 रुपये प्रति कुंतल, टिंडा 2020 से 2250 रुपये प्रति कुंतल, और इस समय जो गर्मी का राजा है तरबूज, उसका भाव है 870 से 1050 रुपये प्रति कुंतल। तो किसान साथियों, ये थे मंडी भाव। हम आपको मंडी भाव इसलिए बताते हैं ताकि आप जब अपनी फसल बेचने जाएं तो आप भी उसका उचित दाम प्राप्त कर सकें। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मौसम की दुनिया में और बताते हैं कि मौसम आपसे क्या कह रहा है। तो भाइयों बहनों, देख ही रहे होंगे आजकल आप लोगों के मोबाइल पर भी अलर्ट आ रहा होगा कि आगरा व उसके आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का असर है और गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है और 24 घंटों में कितनी गर्मी पड़ने के आसार हैं। तो इस समय अभी तापमान लगभग 45 डिग्री है और 46 डिग्री तक जा सकता है। मौसम साफ रहेगा, धूप वाला ही रहेगा, गर्मी इसी तरीके से रहेगी। पर किसान साथियों, जो आपके लिए जरूरी है वो है कि इस गर्मी में आपको अपना ध्यान रखना है, थोड़ी सी सावधानी बस रख के आप अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको करना क्या है, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में कम निकले, बहुत जरूरी हो तभी निकले, कोई काम ना हो तो ना निकले। अब भाई हमारे किसान हैं वो तो निकलेंगे ही, पर काम के साथ साथ किसान साथी आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा आराम भी आप कर लीजिए बीच बीच में। खूब सारा पानी पीजिए, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और साथ ही सूती हल्के कपड़े पहने, और इस समय बच्चे और बुजुर्गों का तो खास ध्यान रखने की जरूरत है। और मौसम विभाग के अनुसार के साथ ही समय समय पर आपके मोबाइल पर ही हीट वेव की रेड चेतावनी भी जारी होती रहती है, तो उसका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो किसान साथियों, देख ही रहे हैं गर्मी कैसी बढ़ रही है, इसने तो हमें कर दिया है बेहाल। अरे हमें ही नहीं किसान साथियों, इसने जो हमारे महावीर सिंह चार जी गायक है ना, उनको भी बेहाल ही कर रखा है। कैसे, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जवानी।

किसान साथियों, इसी लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी साथियों का। कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आज का प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं को सोच कर रखना है, जिससे जब हम कार्यक्रम के अंत में उसका जवाब दें तो हमारे श्रोता अपने सोचे हुए उत्तर को दिए गए जवाब से मिला सकें। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो यूरोपीय देश फ्रांस की कॉलोनी यानी उपनिवेश रह चुका है। और इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए ज्ञानवर्धन और हां मनोरंजन भी। तो चलिए अब करते हैं आज की बात। साथियों, हमारा जीवन उन सब चीजों में से एक है जिसको समझदारी से जिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को कुशलता से भले कामों में लगाता है और अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और अपने राष्ट्र के भले की सोचता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता और ऐसे मनुष्य का जीवन ही सफल कहा जाता है। जीवन को कुशलता से जीने के लिए एक मनुष्य को समय के महत्व का एहसास भी होना चाहिए और इसका कुशलता से उपयोग भी करना चाहिए। आज की तुलना में पुराने समय में लोगों का जीवन कहीं अधिक अनुशासित

विकसित होता था। वे सुबह जल्दी उठते थे और समय के साथ अपने दैनिक कामों की शुरुआत कर दिया करते थे। उन्होंने अपने कामों के प्रति जागरूकता दिखाई और उन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे अपने जीवन को कुशलता से गुजारा कर सके। आज भले ही हम लोग जानते हैं कि जीवन मूल्यवान है, ये लेकिन समझदारी आने पर भी इसका एक बड़ा हिस्सा दोस्तों के साथ लापरवाही में, जिसमें मनोरंजन के सभी साधन शामिल होते हैं, पारिवारिक और सामाजिक लड़ाई झगड़ों में गुजार देते हैं। दोस्तों, जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए जीवन को अनमोल या जीवन को बहुमूल्य या फिर अमूल्य भी कहा जाता है। आजकल की बात करें तो बहुत से युवा खाली सड़कों पर मोटरसाइकिल या दूसरे अन्य वाहनों पर अलग अलग तरह के स्टंट दिखाते हैं, जिससे बहुत से युवाओं का अनमोल जीवन परवान चढ़ने से पहले ही समाप्त भी हो जाता है। इसके अलावा समाज का एक बहुत बड़ा तबका मोबाइल फोन, इंटरनेट और मनोरंजन के दूसरे कामों में अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवा देते हैं, और इसकी वजह से जीवन में नियत समय पर किए जाने वाले काम भी ठीक से या समय पर पूरे ही नहीं हो पाते। जबकि जीवन में समय के ऊपर लेक्चर देने वाले सभी विद्वानों का कहना है कि एक समय में मनुष्य को जिस तरह से आश्रम व्यवस्था सिखाई जाती थी और वो उस पर अमल करते थे, आज वही मनुष्य जीवन भर समय कम है का रोना रोता है, जबकि अपनी लापरवाही में उसी समय को फालतू कामों में भी बिता देता है, जिसमें जीवन को संवारा जा सकता था। एक समझदार इंसान को अपने जीवन में गैर जरूरी कामों को लेकर अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, जबकि पहले अपने कामों को प्राथमिकता देनी है और खासतौर पर समय के प्रति जागरूकता बरतनी है और उन्हें पूरा भी करना है, तभी उसका जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। हम अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं को घटित होते देखते हैं, जिनका अच्छा और बुरा प्रभाव किसी भी मनुष्य के विचारों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो लोग अपना एक लक्ष्य बनाकर जीवन जीते हैं और यही सोचते हैं कि जीवन तो सतत चलने का काम है, इसमें रुकना या थकना, ठहर जाना सिर्फ उस मनुष्य का ही काम है जो अपने लक्ष्य से भटक कर फालतू कामों में लग जाता है। वही समय जिसमें दुनिया के किसी हिस्से में बैठा एक मनुष्य लाखों रुपए कमा लेता है, तो वहीं किसी अन्य हिस्से में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसी एक घंटे को फालतू कामों में या गपशप में बिता रहा होता है। किसी भी मनुष्य को दुख की जगह पर दुख, सुख की जगह पर सुख प्रकट करना या उसमें हिस्सा लेना आवश्यक तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी ही किसी घटना से चिंतित होकर अपने जीवन को ठहरा लेना या उसकी एक समय पर थाम कर बैठ जाना भी सही नहीं है। जीवन एक समय ही तो है, जिस तरह समय चलता रहता है उसी तरह जीवन भी चलता ही रहना चाहिए। अगर आप थक कर बैठ जाएंगे तो किसी अन्य मनुष्य का जीवन थक कर बैठा नहीं रहेगा। इसका अर्थ यही है कि जीवन तो चलते रहने का ही नाम है, इसीलिए उसे सही दिशा दें और उस राह पर आगे बढ़ते चले जाएं, तो सफलता का नाम आपसे आकर अपने आप ही जुड़ जाएगा और आपका भी जीवन बहुत से कामयाब लोगों के जितना कामयाब हो सकेगा। आइए श्रोताओं, सुनते हैं यह गीत।

0: साथियों, भारत साहित्य की जब भी बात चलती है तो कुछ बात कविता के विषय में भी की जाती है। कोई व्यक्ति अपने मनोभावों को कलात्मक रूप से जिस भाषा या भावों द्वारा व्यक्त करता है उसे कविता कहते हैं। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर तक देती है। कविता के मूल में संवेदना होती है, वही संवेदना जिसे रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। हमारे कार्यक्रम में समय समय पर कई कवियों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं का मन मोह लिया है। इसी क्रम में आज के प्रोग्राम में हमने रज्जाक अहमद के काव्य पाठ को शामिल किया है। आइए सुनते हैं यह काव्य पाठ।
1: कि शहर तो चल दिए, गांव का मौसम याद आएगा। शहर तो चल दिए, गांव का मौसम याद आएगा, और यहाँ का प्यार तुमको एक न एक दिन खींच लाएगा। कि शहर तो चल दिए, गांव का मौसम याद आएगा, यहाँ का प्यार तुमको एक न एक दिन खींच लाएगा, और इसे खंडहर समझकर गांव का घर बेच मत देना। इसे खंडहर समझकर गांव का घर बेच मत देना। कभी आना पड़ा गांव तो यही सर छुपाएगा। कभी आना पड़ा गांव तो यही सर छुपाएगा। कभी आना पड़ा गांव तो यही सर छुपाएगा। और देखिएगा कि वतन को छोड़कर गांव के मंजर याद आते हैं। कि वतन को छोड़कर गांव के मंजर याद आते हैं, और किसी के चोट लग जाए तो सब मरहम लगाते हैं। कि वतन को छोड़कर गांव के मंजर याद आते हैं, किसी के चोट लग जाए तो सब मरहम लगाते हैं। और तुम्हारे शहर में पानी सा मट्ठा मोल मिलता है, तुम्हारे शहर में पानी सा मट्ठा मोल मिलता है, हमारे गांव में असली मठा सब यूं पिलाते हैं। हमारे गांव में असली मठा सब यूं पिलाते हैं। हमारे गांव में असली मठा सब यूं पिलाते हैं। और देखिएगा कि हमेशा अपने प्यारों के लिए ये दिल पिघलता है। हमेशा अपने प्यारों के लिए ये दिल पिघलता है। उसे उल्फत है कीचड़ से कि गुल कीचड़ में।

मिलता है। हमेशा अपने प्यारों के लिए ये दिल पिघलता है, उसे उल्फत है कीचड़ से कि गुल कीचड़ में खिलता है, और मांग कर मान और सम्मान भी लीना तो क्या लीना, मांग कर मान और सम्मान भी लीना तो क्या लीना, अजी सम्मान तो दिल की जुबां से खुद निकलता है, अजी सम्मान तो दिल की जुबां से खुद निकलता है। और ये मुक्तक देखिएगा कि ज्ञानी की संगत में रहता मन में ज्ञान भरा होता, कि ज्ञानी की संगत में रहता मन में ज्ञान भरा होता, और हुनर अगर वो जानता कोई पैर पे अपने खड़ा होता। कि ज्ञानी की संगत में रहता मन में ज्ञान भरा होता, हुनर अगर वो जानता कोई पैर पे अपने खड़ा होता, और मालो दौलत पाकर इंसान खुद को बड़ा समझता क्यों, मालो दौलत पाकर इंसान खुद को बड़ा समझता क्यों, और मानवता जिसके अंदर है वो इंसान बड़ा होता। कि मानवता जिसके अंदर है वो इंसान बड़ा होता, मानवता जिसके अंदर है वो इंसान बड़ा होता। और ये मुक्तक भी देखिएगा, देशभक्ति है कि वतन के वास्ते मुझको तो सीमा पर लड़ा देना। एक जवान अपने सीनियर अधिकारी से क्या कहता है कि वतन के वास्ते मुझको तो सीमा पर लड़ा देना, कि देकर तोप और गोले मुझे आगे बढ़ा देना, कि देकर तोप और गोले मुझे आगे बढ़ा देना, मेरा जब दम निकल जाए करम इतना करा देना। ये है जवान की पुकार, देखिएगा कि मेरा जब दम निकल जाए।

तिरंगे से उड़ा देना। ये आगरा आकाशवाणी के माध्यम से श्रृंगार रस का गीत पेश करना चाहता हूँ, देखिएगा आप। नायक नायिका का गीत है ये, देखें आप। नायिका कहती है कि मेरी हर सांस पर नाम है आपका, मेरी हर सांस पर नाम है आपका, मेरे दिल में तुम्हारी ही तस्वीर है।

आपका। अंतरा देखिएगा कि मेरी आंखों में वर्षों से जो ख्वाब था आज वो ख्वाब सच सा नजर आ रहा। मैं तो तेरी मोहब्बत में यूं सज गई, देख दर्पण भी मुझको है शर्मा रहा, देख दर्पण भी मुझको है शर्मा रहा। बनके राजा जरा देख तो लीजिए, बनके राजा

देकर के किस्मत बना दीजिए, मुझसे रूठी हुई मेरी तकदीर है, मेरी हर सांस पर नाम है आपका। और नायिका अपने नायक से क्या कहती है, देखिएगा आप, कि फूल गुलशन में बेशक खिले हर घड़ी, मेरे मन का बगीचा तो वीरान है, आपके रूप ने जाने क्या कर दिया, खाते पीते हुए जिस्म बेजान है, खाते पीते हुए जिस्म बेजान है, और धीरे धीरे से बढ़ता है दर्दे जिगर, धीरे धीरे से बढ़ता है दर्दे जिगर, बढ़ के

0: पुकार। और इस गीत के अंतरे में नायक जो होता है वो शहर का होता है और नायिका गांव की। तो जब नायक गांव पहुंचता है नायिका की, कुछ अपने एटीट्यूड दिखाता है उसके सामने, तब तो नायिका क्या कहती है देखिएगा आप। कि कितना रंगी समा और हम तुम जवा, हाथ में हाथ लेकर के घूमे चलो। कितना रंगी समा और हम तुम जमा, हाथ में हाथ लेकर के घूमे चलो। ये नायिका की दिल की पुकार है, देखिएगा। कि कितना रंगी समा और हम तुम जवा, हाथ में हाथ लेकर के घूमे चलो। छेड़कर कोई मीठी सी प्यारी सी धुन, डालकर हार बाहों के घूमे चलो। डालकर हार बाहों के घूमे चलो। और तुम हो शहरी तो गांव भी ये कम नहीं, तुम हो शहरी तो गांव भी ये कम नहीं। मेरा गांव तो एकदम से कश्मीर है, प्रेम दे करके किस्मत बना दीजिए। प्रेम दे करके किस्मत बना दीजिए, मुझसे रूठी हुई मेरी तकदीर है। मेरी हर सांस पर नाम है आपका।
1: श्रोताओं की सेवा में यह था काव्य पाठ रज्जाक अहमद, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे। और साथियों, अब लेते हैं एक अंतराल।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे गर्मियों की मेवा कहे जाने वाले खरबूजे की। साथियों, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में खरबूजा एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, खरबूजे में लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और गर्मी में ठंडक बनाए रखता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाते हैं। खरबूजा फाइबर से भरपूर होता है, जो हमारी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और कब्ज की शिकायत में भी राहत देता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने की वजह से ये वज़न कम करने वालों के लिए एक आदर्श फल साबित होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी अपनी त्वचा को पोषण देकर उसे स्वस्थ और चमकदार बनाती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने से लेकर दिल और किडनी को स्वस्थ रखना, आँखों की रोशनी को बेहतर बनाने के साथ साथ गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा यानी लू लगने से भी बचाता है। बस खरबूजा खाने के तुरंत पानी पिएं, रात में अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। अगर डायबिटीज के मरीज हों तो सीमित मात्रा में ही और हमेशा ताज़ा और साफ फल का ही सेवन करें। तो ये था आज का टिप्स में हमने बात की खरबूजे की। और अब उत्तर आज के सवाल का। तो भाई, आज का सवाल था कि भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको बताना है जहां यूरोपीय देश फ्रांस की कॉलोनी रह चुकी है। और इसका सही उत्तर है भारत के दक्षिणी हिस्से में बसा एक छोटा सा प्रदेश पुडुचेरी। जिस तरह कभी पूरे भारत में अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तो वहीं पुडुचेरी में खास तौर पर फ्रांसीसी शासन था। और यही वजह है दोस्तों कि आज भी पुडुचेरी के लोग फ्रांसीसी भाषा अच्छी तरह बोलते हैं और समझते भी हैं। और साथियों, अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में अब समय हो चला है ज्ञान सागर का। चूंकि आज मधुमक्खी दिवस है, तो आज के ज्ञान

सागर में कुछ जानकारी मधुमक्खियों के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में जानवरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों के घरों में ये हमारे दोस्त या साथी या परिवार के हिस्से के रूप में होते हैं। छोटे बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे छोटे कीट पतंगे भी हमारे लिए कई तरह से लाभदायक होते हैं। हम लोग जो फल या सब्जियां या अनाज खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए केवल धूप, मिट्टी, बीज और पानी ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कीट पतंगों का भी विशेष योगदान है। धरती पर कृषि का एक बड़ा भाग कीट पतंगों पर भी निर्भर होता है। कई लोग बड़े पैमाने पर जानवर पालन करते हैं, जो उनका व्यापार होता है। जानवरों के पालन से जुड़े कई लोग कीट पतंगों का पालन भी करते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा, शहद वाली मक्खी वगैरह। दोस्तों, शहद वाली मक्खी का पालन संसार भर में उसके शहद के लिए किया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत खास है। मधुमक्खी और इसके पालन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें कई खतरों से बचाने के लिए विश्व स्तर पर हर साल 20 मई यानी आज ही के दिन मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। यह खास दिवस मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक का नेतृत्व करने वाले स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालक एंटोन जंशा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जन्म जाने वाले एंटोन जंशा का जन्म सन 1734 में यूरोप के स्लोवेनिया देश में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को यानी आज के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव में विशिष्ट संरक्षण उपायों को अपनाने और मधुमक्खियों के संरक्षण और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मना लिया गया। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर की 70% कृषि कीट पतंगों पर ही निर्भर है, जिसमें कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 100 में से 70% खाद्य पदार्थ में मधुमक्खियों का सहयोग है। मधुमक्खी एक ऐसी कीट है जो किसी भी तरह की रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस नहीं छोड़ती है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि मधुमक्खी के संपर्क में आने से व्यक्ति को कोई बीमारी हुई हो। सदियों से पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर मधुमक्खियां और अन्य पराग इकट्ठा करने वाले कीट न केवल फलों, नट और बीजों का बहुतायत से उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, बल्कि अधिक विविधता और बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान भी करते हैं। आज मधुमक्खियां, परागणक और कई अन्य कीट बहुतायत में घट रहे हैं, इसलिए यह दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि हम सभी कामों को बढ़ावा देने की कोशिश करें जो परागणक कीटों और उनके आवासों की रक्षा को वृद्धि करें, उनकी बहुतायत और विविधता में सुधार करें। दोस्तों, मधुमक्खी पालन एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है, जिसमें आय, रोजगार, वातावरण को शुद्ध रखने की क्षमता भी है। इसे हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित भी हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियों को उनकी आदतों के मुताबिक कृत्रिम गृह में पालकर उनकी वृद्धि करने, शहद और मोम आदि प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद के बारे में तो हम सभी खूब जानते हैं, आइए इस दिवस पर उनके परिवार के बारे में कुछ बात की जाए। साथियों, एक मधुमक्खी परिवार में एक रानी मक्खी के अलावा कई हजार श्रमिक और करीब 100-200 नर मक्खियां होती हैं। औसतन 2 से 3 साल की आयु वाली रानी मक्खी ही पूर्ण मादा होती है, जो परिवार की जननी होती है। रानी मधुमक्खी का मुख्य काम अंडे देना है। अच्छे पोषित वातावरण में इटालियन जाति की रानी मक्खी एक दिन में 1,500 से 1,800, जबकि भारतीय मक्खी करीब 700 से 1,000 अंडे देती है। एक मधुमक्खी परिवार में कई हजार अपूर्ण मादा श्रमिक मक्खियां भी होती हैं। परिवार के सभी कार्य भी करती हैं, जैसे रानी मक्खी के दिए हुए अंडों का बच्चों का पालन पोषण करना, फलों और पानी के स्रोतों का पता लगाना, पराग और रस इकट्ठा करना, पूरे परिवार और छत्तों की देखभाल, शत्रुओं से रक्षा करना वगैरह। इनकी उम्र लगभग 2 से 3 महीने ही होती है। इनके परिवार में रानी मक्खी से छोटी लेकिन श्रमिक मक्खी से बड़ी एक नर मधुमक्खी भी होती है, जिसकी औसत आयु करीब 60 दिन यानी कि 2 महीने की होती है।
रानी मक्खी को गर्भवती करने के तुरंत बाद इनकी

उत्पत्ति हो जाती है, जहां देशी मधुमक्खी प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार, जबकि इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम प्रति परिवार शहद का उत्पादन करती हैं। तो साथियों, यह थी मधुमक्खी की जानकारी, और आइए सुनते हैं यह मधुमक्खी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी

0: सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said that both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after a joint parliamentary committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations projected a growth rate of 6.4% this year despite global uncertainty caused by the Iran conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said that India's strong consumer demand, public investment and growth in services, exports continue to support its economy. Severe heat wave gripped northern and central India with temperatures reaching 44 degree mark at several places today. In Rajasthan, an orange alert has been issued for severe heat wave conditions in two districts, while a yellow alert has been issued in 14 districts. An orange alert has also been issued in Punjab and Haryana. The IMD has forecast severe heat wave conditions will continue over northwest and central India during the whole week. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to field against Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हो चुके हैं। साथियों, आज 20 मई है, आज सुमित्रा नंदन पंत जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में सुनते हैं कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय है पंत के काव्य में कल्पना और भावनाओं का संतुलन। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रीति यादव।
3: पंत को हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के चार स्तंभों में से एक माना जाता है। पंत कोमलकांत पदावली के सृजक माने जाते हैं। पंत प्रकृति के चितेरे कवि, सौंदर्य की उपासक और शब्द शिल्पी के रूप में हमारे सामने आते हैं। पंत के काव्य की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता उनकी कोमल कल्पना और गहरी भावनाओं का अद्भुत संतुलन है। पंत जी ने प्रकृति को केवल बाहरी दृश्य रूप में नहीं बल्कि एक जीवन संवेदनशील और मानवीकृत सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया। प्रकृति के साथ उनकी प्रगाढ़ता शैशवावस्था से ही थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड के कोसानी, जो कि देवभूमि है, उसमें हुआ था। उन्होंने अपना बचपन ही प्रकृति की गोद में बिताया था। वो प्रकृति को ही अपनी माता, पिता, भाई, बहन और प्रेयसी मानते थे। इसकी स्पष्टता उनकी कविता में दिखाई देती है। माँ से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित, धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनकवन पोषण, मातृहीन बालक

सर पर बरद हस्त धर गोपन। पंथ के काव्य में कल्पना के अनेक रंग रूप गंध ध्वनि से सजा हुआ इंद्रध्वनिषी लोक दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भावनाओं के विविध रूप करुणा प्रेम दया मानवता और सामाजिक चेतना से भरा हृदय, उनके हृदय ने कल्पना और भावनाओं का संतुलन स्थापित करते हुए काव्य रचना की। उन्होंने कभी भी कल्पना को भावना से अलग नहीं किया, न भावना को कल्पना की चमक से वंचित रखा। यही संतुलन उनके काव्य को छायावाद का स्वर्ण युग बनाता है। पंथ के आरंभिक काव्य संग्रह पल्लव गुंजन वीड़ा में कल्पना चरम पर है। प्रकृति संबंधी वर्णन में स्वतंत्र पंथ जी की कल्पना शीलता देखी जा सकती है। पंथ ने प्रकृति के आलम्बन उद्दीपन आदि सभी रूपों का चित्रण किया है। स्वयं कवि पंथ ने स्वीकार किया है उषा संध्या फूल कोयल कलक ओसो के बन और नदी निर्झर मेरे एकांकी किशोर मन को सदैव अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, तथा सौंदर्य के अनेक सभ्य स्फुट उपकरणों से मनोरम मूर्ति रचकर मेरी कल्पना और भावनाओं को समय समय पर उसे काव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करते रहे हैं। पल्लव 1926 पंथ का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है। इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। इस काव्य रचना ने कल्पना का रंग सबसे गाढ़ा दिखाई देता है, पर भावनाओं के स्वरूप अलग नहीं है। उसमें भावनाओं का सुंदर समावेश किया गया है। उड़ता उड़ता आया हूँ, थक कर बैठ गया हूँ मैं, मधु की एक बूंद कहाँ है, व्याकुल होकर पूछ रहा हूँ मैं। बाल विहंग कविता में पंथ पक्षी के माध्यम से आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं। यहाँ पक्षी का बिंब पूरी तरह काल्पनिक है, पर उसकी व्याकुलता मानवीय भावना है। पाठक पक्षी में नहीं अपनी प्यास में खुद को पाता है। पल्लव की भूमिका में पंथ खुद लिखते हैं, कविता मनुष्य के हृदय की वस्तु है, यानी कल्पना कितनी भी उड़े उसे अंत में हृदय में ही उतरना है। यही कल्पना और भावना का संतुलन है। पल्लव की परिवर्तन कविता कवि की सौंदर्य चेतना में भी परिवर्तन लाती है। यहाँ पहुंचकर कवि की सौंदर्य चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। गुंजन तक आते आते कवि की भावना जगत के सुख दुख से भी जुड़ जाती है। इनके काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना दिखाई देती है। सुंदर से नित सुंदरता, सुंदरता से सुंदरतम, सुंदर जीवन क्रम रे सुंदर सुंदर जग जीवन। पंथ जी की कल्पना निराधार नहीं है। पंथ ने कल्पना को इंद्रियों से बांधा है। वे देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं। इसीलिए उनकी कल्पना और भावनाओं का समावेश पाठकों के मन में प्राकृतिक दृश्यों को प्रकट करता है। नारी के प्रति कविवर पंथ की भावनाएं बड़ी उदात एवं उदार हैं। ये उसे देवी माँ सहचरी प्राण प्रिय आदि शब्दों से संबोधित करते हैं और अपनी कोमल कल्पना और भावनाओं के माध्यम से नारी के सहज एवं स्वाभाविक सौंदर्य का अंकन करते हैं। नारी की सुंदरता पर मैं होता नहीं विमोहित, शोभा का ऐश्वर्य मुझे करता अवश्य आनंदित। 1930 के बाद पंथ का काव्य बदला। युगांत युगवाड़ी ग्रंथि में कल्पना के रंग थोड़े फीके पड़े और भावनाओं विचारों सामाजिक सरोकार बहुत प्रबल हुए। इसका प्रमुख कारण था गांधीवादी दर्शन मार्क्सवादी चेतना मानवतावाद सब उनके काव्य में उतर आए। इन सबसे प्रभावित होकर पंथ ने अपनी काव्य रचना का स्वर ही बदल दिया। अब वो कहते हैं, मानव तुम विश्व नायक हो, तुम ही सृष्टि के भाग्य विधाता। यहाँ कल्पना नहीं एक ज्वलंत भावना है। मनुष्य की गरिमा श्रम की महत्ता भविष्य का विश्वास पंथ ने समझा कि केवल सौंदर्य चित्रण से समाज नहीं बदल सकता। इसीलिए उन्होंने कल्पना को सामाजिक भावना का वाहक बना दिया। पंथ ने ग्रंथि काव्य में प्रेम भावना और कल्पना का सुंदर मिश्रण रूप दिखाई देता है। जहाँ वे प्रेयसी की कल्पना में खोए रहते हैं, वे प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उसमें किसी अलौकिक सत्ता का अनुभव करते हैं, जो उनकी कल्पना और रहस्यमयी भावना का संतुलन है। वे प्रकृति के दृश्यों को मानवीय भावनाओं सुख दुख कोमल भाव से जोड़कर एक आत्मीय रिश्ता कायम

करते हैं। प्रकृति, जीवन और मनुष्य का जैसा यथार्थ रिश्ता पंथ के काव्य में मिलता है, वह अन्यर्थ दुर्लभ है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक हिंदी छायावादी कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। छायावादी चाटुष्ट्य में कवियों के मध्य सुमित्रा नंदन पंत का रचना काल सर्वाधिक विस्तृत लगभग 6 दशक का रहा है। पंत जी ने छायावाद को पलायन के आरोप से बचाया। उन्होंने

0: अधिक विस्तृत लगभग 6 दशक का रहा है। पंत जी ने छायावाद को पलायन के आरोप से बचाया। उन्होंने दिखाया कि कल्पना आसमान में उड़कर भी जमीन की बात कर सकती है, भावना जमीन पर चलकर भी आसमान छू सकती है। जहां दोनों का संतुलन हो जाए तो दुनिया बदल सकती है। सारा खेल ही कल्पना और भावनाओं के संतुलन का ही है। उन्होंने कल्पना को भावना की देह दी और भावना को कल्पना के पंख। एक के बिना दूसरी अधूरी है और पंथ के काव्य में दोनों पूरी हैं। अपनी इस कल्पनाशीलता के कारण ही पंत आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे अपने काव्य को भावनाओं और कल्पना से परिपूर्ण करके काव्य को सजीव बना देते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। सचमुच पंत जी ने भावों के प्रवर्तन के लिए अतिशय कल्पना और भावनाओं का संतुलन किया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय था पंत के काव्य में कल्पना और भावनाओं का संतुलन। वार्ताकार थी डॉक्टर प्रीति यादव। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
4: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
3: गर्मी और

0: डेंगू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा जिससे जानकारी

0: का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
1: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? साथियों, इस बढ़ती हुई गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। जो भी जरूरी काम हो उन्हें सुबह ही कर लें या शाम को घर से बाहर निकलें, और समय समय पर तरल पेय पदार्थ लेते रहें, जैसे छाछ, नींबू पानी, शरबत आदि। हल्का खाना खाएं, सर को ढककर ही बाहर निकलें, सावधान रहें और लू की चपेट में आने से बचें। साथियों, ये तो रहे हमारे और आपके हालचाल। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज है भारत के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती। ये दिन हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। भारत की साहित्यिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज, प्रकृति, संस्कृति और मानवता को नई दिशा दी। इन्हीं महान कवियों में से एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादी कवि थे। आपकी कविताओं में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, मानव प्रेम, देशभक्ति और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। सुमित्रा नंदन पंत केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के समर्थक भी थे। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी कविताएं आज भी विद्यार्थियों, साहित्यकारों और पाठकों को प्रेरणा देती हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक सुंदर पर्वतीय गांव में हुआ था। कौसानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर फैले हिमालय के पर्वत, हरे भरे जंगल, नदियां और शुद्ध वातावरण ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। मां के स्नेह से वंचित रहने के कारण उनका बचपन कुछ कठिनाइयों में बीता। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन से ही पंत जी को प्रकृति से विशेष प्रेम था। वे पहाड़ों, पेड़ों, फूलों और पक्षियों को ध्यान से देखते थे। प्रकृति के प्रति यही लगाव आगे चलकर उनकी कविताओं की आत्मा बन गया। साथियों, आगे की बात हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं महान कवि सुमित्रा नंदन पंत के विषय में। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी और इलाहाबाद गए। विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें साहित्य पढ़ने का शौक हो गया था। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला साहित्य से अत्यधिक प्रभावित थे। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा छोड़ दी। वे भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। उन्होंने बहुत कम उम्र में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति का कोमल और सुंदर चित्रण दिखाई देता है। पंत जी की कविताएं सबसे सुंदर रचनाओं में गिनी जाती हैं। उनकी भाषा अत्यंत मधुर, सरल और संगीतात्मक थी। उनकी कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं बोल रही हो। पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे महसूस किया। उनकी कविताओं में पहाड़, फूल, नदियां, चांद, तारे और ऋतुओं का जीवंत चित्रण मिलता है। वे प्रकृति को मानव जीवन का साथी मानते थे। उनकी कविताओं में प्रकृति कभी मां बनकर आती है, कभी मित्र बनकर और कभी प्रेरणा का स्रोत बनकर। उनकी कविताओं में प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता का सुंदर चित्रण मिलता है। वे मानवता और भाईचारे के पक्षधर थे। पंत जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर देशभक्ति की कविताएं भी लिखीं। वे भारत को महान और समृद्ध राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। उनकी बाद की कविताओं में आध्यात्मिक चिंतन दिखाई देता है। उन्होंने मानव जीवन के उद्देश्य, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर भी विचार व्यक्त किए। पंत जी ने हिंदी साहित्य को अनेक अमूल्य कृतियां दी। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, चिदंबरा और लोकायतन। इन सभी रचनाओं में प्रकृति, समाज, मानवता और दर्शन का अद्भुत मिश्रण मिलता है। पंत जी को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें उनकी प्रसिद्ध कृति चिदंबरा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हर वर्ष 20 मई को पंत जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पंत जी का जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। वे प्रकृति प्रेमी, संवेदनशील और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने सभी को शिक्षा दी कि प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त होती है। साहित्य समाज को बदलने की शक्ति रखता है, आदि। उनकी कविताएं केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि पाठकों के मन में नई चेतना भी जगाती हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास में योगदान देना चाहिए। इन महान कवि का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं और विचार सदैव अमर रहेंगे। उनके विचार और रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी।

सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। सुमित्रा नंदन पंत जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न करने की उषा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। हमारी आज की कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। शब्द रचना है फैज अनवर की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल। शब्द रचना है समीर की, संगीत दिया है आनंद मिलंद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। फिल्म का नाम है सड़क। शब्द रचना है समीर की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में. फिल्म का नाम है नगीना. शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

कार्यक्रम का अंतिम गीत है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है तेजाब। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लकी अली की आवाज में, फिल्म का नाम है सुर। शब्द रचना है निदा फाजली की, संगीत दिया है MM करीम ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। सोनू निगम की आवाज में फिल्म का नाम है फरेब। शब्द रचना है सैयद कादरी की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के

0: रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों

0: के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण

0: कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने यह पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम

0: From our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िराअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िराअत, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर खोज किया है।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने

0: कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरक पैदावार और मुश्तरक तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का

0: देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीराजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दोतरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के जिमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी

के माहिदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगी लाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाब्तगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मर्दुमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दुमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बराबर कोशिशों को तेज करने से इत्तफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निजामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक्वामे मुत्तहदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाजा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक्वामे मुत्तहदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक्वामे मुत्तहदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्व मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरतहाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात

ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अकवामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है। एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। उपयोग के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में

खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था, ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद

0: खास मेहमान पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए 3रे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है, यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Ankoma had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो या फिर युद्ध और

0: संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
1: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
0: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector.

0: एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स. वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी. टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इंप्रूविंग. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं. कोविड-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही. जब कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई. वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी. हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी. तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा. और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है. भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं. ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है. और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवी दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है.
1: अशोक जी, एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते. भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं. आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं. वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है. और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है. यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे. और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है. और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था. इसका इतना व्यापक रूप है. ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे. इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी.
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है. यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा.

0: मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का। हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक

0: कार्यक्रम का अगला गीत है उमेर इनायत की आवाज में, फिल्म का नाम है जय वीरू। शब्द रचना है उमेर इनायत की, संगीत दिया है वप्पी लहरे ने।
1: That's right. Pump it up.

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है कभी कभी। शब्द रचना है साहिर की, संगीत दिया है खयाम ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत रूप कुमार राठौर और चित्रा की आवाजों में। फिल्म का नाम है फिलहाल। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग विहाग में ख्याल गायन। रचना के बोल हैं मेरो मन अटकोरी आली। रचना विलंबित एक ताल में निबद्ध है। दूसरी रचना के बोल हैं अब हो ललन जो द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। प्रस्तुत है राग विहाग में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद गुलाम मुस्तफा का राग बिहाग में ख्याल गायन। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग

0: toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 PM local time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी कल प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:50 पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।